साचे मन से कर लो यारी, छोड़ दो जग की झूठी यारी, इनसे बना लो रिश्तेदारी, तो कटे जिंदगी फिर हो

पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। जब जो जावे इनके द्वारे पापी से पापी भी तारे भव सागर से पार उतारे। तो इनको नी तट अरे हाँ

अरे उठा सा टुका नारद देखे करम की रेखा सा तो मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

अरे सोची नैया जवानी पन में

करो हरि जगत जगतार भजन करो हरि जगत जगतार भजन

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: कार्यक्रम शुभ कल सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा,
2: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। साथियों, कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है शुभ कल कार्यक्रम।
1: यह कार्यक्रम रेडियो बुंदेलखंड और लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है,
2: और ये श्रृंखला का 11वां कार्यक्रम आप लोगों के बीच हम लोग लेकर आए हैं। साथियों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत को कम होती ही है, इससे साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की इस स्पर्धा में जैविक उत्पादन अधिक खरे उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा कृषक भाई अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे से होंगे। और साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने जाना था कि क्या कारण है कि लोग जैविक खेती क्यों नहीं करते हैं, वो आंकड़ों पर हमने एक नजर डाली थी। साथ साथ में हमने समुदाय से बात की थी, और विषय विशेषज्ञ द्वारा हमने जाना था कि लोग जैविक खेती करने में क्यों हिचकिचाते हैं। बहुत सारी बातें निकल के आई थी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आज बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती करने से हमें क्या लाभ है।
1: हमारे इन कार्यक्रमों के बनाने का उद्देश्य भी यही है, कैसे हमारे किसानों की दिशा और दशा में सुधार हो सके। इसके लिए हमारे किसान साथियों जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है, खास तौर पर महिला किसान।
2: वर्षा, हमारे किसानों की दिशा और दशा तभी सुधरेगी जब हमारे किसान साथी जागरूक होंगे, और जागरूक तभी होंगे जब उनके पास उस विषय की अच्छी तरह से जानकारी हो, और जानकारी तभी होगी जब रेडियो बुंदेलखंड पर इन कार्यक्रमों को सुनेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी उन किसान साथियों के लिए बना रहे हैं, और खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो दिन रात अपने परिवार के साथ खेतों पर मेहनत करती हैं।
1: अरे मनीष भैया, इनको समझाने के लिए हमारी बैरू भौजी ही काफी है, क्योंकि उन्होंने अपने लालाजू को भी समझाया। आइए चलते हैं बैरू भौजी के पास।

0: लालाजू, ओ लालाजू।
1: हाँ भाजी, बता क्या बात है?
0: क्या बात है लालाजू, आप तो बड़ी आराम से बोल रहे।
1: ले भाजी, अब तक नेक आराम से बोलो, सो भाई बात।
0: क्या कह रहे नेक कठिया के बोलो, सो भाई बात।
1: अरे भौजी, तनक हमने कही कि आज आराम से बतिया लिए, भौजी से बेसी तो लड़त रहता अपन।
0: अरे लालाजू, मैं जाके भी आई थी कि नेक तुम मे संगे चलो।
1: तुम्हारे संगे चलो?
0: हाँ।
1: काहे के लाने?
0: मैं हारे चलू नेक।
1: हारे चलो?
0: हाँ।
1: ऐसो काहे ते हारे कि हम हारे चले थे?
0: अरे लालाजू, मैं कह रही तो समझ लू, जरूरी काम है मुझे।
1: अरे भौजी, अब हम पढ़ रहे।
0: पढ़ रहे बात में पढ़ ली, जो आखने मुझे जरूरी काम है वो हारे तुम से मिल रहे हैं वो।
1: ऐसी क्या बात है, बता ही बता दे तो।
0: क्या कह रहे लालाजू, नहीं चल रहा है?
1: अरे जा कह रहा है भौजी के, ऐसी क्या बात है, इतनी बता दे, हारे जावे की क्या जरूरत है?
0: अरे लालाजू, अब तुम तो इतने पढ़े लिखे होंगे, नेक मुझे का को तो अच्छी सी बता दूं, नेक मैं का डाल लूं ई खेतन में, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, मैं जे दवाई ले आत होंगी, लेकिन इनसे का को मुझे कछु फायदा थोड़ी न पड़ रहा है गो, और मैं सोच रही होंगी कि अगर तुम्हें कोई दवाई आत हुई तो तुम बता दो।
1: भौजी देखो, अब तुम हमसे तो ज्यादा जानते ही हो, काय में लगी हमारे ना के
0: भी। अरे लालाजू, फिर भी मैंने कही तुम पढ़े लिखे होंगे तो मैं तुमसे पूछ लेती होंगी, तुम्हें कछु नहीं आउट का?
1: अरे आउट तो है ना, लेकिन अब मैं खेती बाड़ी में थोड़ी जाना थे एक बात है।
0: अच्छा तो मैं तुम्हारी, चलो मैं तुम्हारी खेती देखी, तुम्हारी कैसी हैगी?
1: हाँ हमारी देखे, हम तो दवाई दीजिए अपनी, ये चल रही है आजकल भी
0: दवाई देते ही।
1: चलो देखे यहाँ तो।
0: चलो चलो, तो पहले तुम्हारी खेती देखे आवे, फिर मैं अपनी देखूँ।
1: तो देख भौजी, देख जा बीबी आसो की अपनी फसल, लेकिन मैं तो किसानी से हार ही गया, लेकिन पढ़ भी जाने तो खेती करने तो जिनमें देखो जी आजकल की दवाई चल रही है अपनी, रासायनिक दवाई जी देती मैं तो जी दुकान से ले लेके।
0: का कह रहे लालाजू, मर भी जाने या तो जा खेती ऊपर से प्राण खा रही?
1: मर भी नहीं, पढ़ भी जाने आओ तई, पढ़ भी जाने तो खेती भी करने संगे संगे, देखो अब किसानी को गांव गाड़ों को काम है तो सब करने आओते ही।
0: हाँ वो तो यह नहीं है कि लालाजू, मैं जा के रही तुम कहा डाल रहा थे, देखो तो जो भटन में कैसे कीरा मीरा सो लग रहा है वो, और का को यह नहीं रुखन आने से लग रहा है, कहा डाल रहा तुम इन्हें?
1: अरे भौजी, दवाई तो मैंने मुलकन दी अपनी बाजार से लिया लिया के।
0: लालाजू मैं तो जा से आई थी देखन, मैंने कही कि तुम्हारी अच्छी हो जो उमदा को लालाजू अच्छी दवाई डाल रहा हूँ, मैं जाई वहाँ ने लालाजू की फसल तो देखे कैसी का हैगी।
1: अरे भौजी, तो ऐसी बातें कर रही कौन, मेरे घर है बन नहीं दवाई, अब मैं तो बाजार से लिया था, तुम जाने का करा था जुम्मू, मैं तुम्हारी देखे हूँ कैसी, तुम ज्यादा वो बता रही तो।
0: अरे चलो लालाजू, तो तुम्हारी से तो अच्छी मेज चाहिएगी, मैं तो जबकि देसी दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे थे, मैं तो बड़े वहां से आई थी, अरे मेरे लालाजू की अच्छी उम्दा हो जाए, पढ़े लिखे है अच्छी दवाई ले आ तुम।
1: अरे भौजी, अब दुकान पे मिल जाता अपनी ये सब चीजें तो फिर काय को दिक्कत करो, जैसे बढ़िया दवाई मिला सिंगन में, दवाई नहीं मिला दुकान पे मशीन से किंच दू
0: रासायनिक
1: और
0: बाकी छत तो
1: भाई तो लिया
0: ले, इतनी अच्छी कही वो हर लगे ना फटकर ही रंग चोखो हो जाए।
1: भौजी तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे ते अपने घर ही बनाते हो दवाई।
0: हाँ उसमें तो बनाते ही हूँ, माँ में कहा सके वो
1: कहा घर है बना।
0: हाँ जो जैविक दवाई है वो तो मैं अपने घर है बनाऊ तो, और अपनी बैगन में और चाहे जो सी फसल हो मैं अपनी उनमें डालत होंगी।
1: कैसी काय को मस्करी कर रही हो जी?
0: कहा कह रहे लालाजू, काय को मस्करी कर रही
1: और
0: तो मस्करी दिखा रही
1: और कही तो रही की घर बना दवाई बना वो हंसी के लेगा।
0: हाँ लालाजू, मैं इनसे उम्दा दवाई बनाते हैंगी, जो रासायनिक दवाई जिनसे मैं जैविक दवाई बहुत अच्छी बना लेती होंगी।
1: अब तो भौजी चला ही नहीं आए थे यार, देखो
2: कैसे चलो तो देख लो मेरी फसल कैसी उम्दा लहलहा रही।
0: और ना ये कहूँ कीड़ा लगो, कीड़ा के लाने जाना बहुत हो तो मैं मुझे तो विशेषक बुला लेते मैं तो उनसे पूछा।

0: ऐसी दवाई कैसे बनाऊं मैं
1: है?
0: जो अपनी चीजें हैं प्राकृतिक ईंधन से कैसे दवाई बनाऊं।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो अब तो चला ही नहीं आए तू हारे।
0: तो चलो देखो अबे, देखो लाला जी जो तो लगो मैं बैगन और जी अबे मैंने टमाटर की पौधे सुबह लगा दी।
1: वो भोजी तेरी फसल तो सांसों देख भी लाखेगी।
0: क्या कह रहे भोजी, तेरी फसल तो बड़ी उम्दा है
1: और मेरी फसल से तो बहुत ही उम्दा हैगी।
0: हाँ तो लाला जी मैं तो यही सोच रही थी कि तुम्हारी उम्दा हो जे, लेकिन मैं तो खुदा बड़ी खुश हो रही कि मेरी अच्छी हैगी। मैं तो इतनी घरे बना था अपनी सब।
1: लेकिन भोजी जी टपक जाए भी मटका धरे जे का धरे चार पाँच।
0: क्या कह रहे लाला जी, टपक जा में लोटा धरे?
1: लोटा नहीं भी मटका धरे बट तू टपक जा में।
0: हाओ लाला जी, मैं मटकन से मैं मटका खाद बना थो।
1: मटका खाद?
0: हाओ
1: बाकी बना थो।
0: ले लाला जी तुम्हें जो ही पता नहीं है, मैं अपनी सब देसी खाद डाल रहा था उनमें, जिससे उनमें उर्वरक जो अपनी खेत की जो उर्वरक शक्ति है और नमी है वो हमेशा बनी रहते और पैदावार भी अच्छी होते।
1: हाँ मैंने पढ़ा तो है ना तो किताबन में मटका खाद जी सब जैविक खादे बनी।
0: अच्छा
1: लेकिन तो मैंने जसूची नहीं है कि खुद बना सका।
0: अरे वो तो है ही बना सकते। तो लाला जी अगली बार ध्यान करने कि दवाई घरे ही बनाने और घरे ही खाद बनाने उन्हीं को इस्तेमाल करने।
1: अब तो भोजी मैं तू जरूर सीख भी आऊँ दवाई बना।
0: बिल्कुल, तो आज जो ट्रेनिंग ले अभी खिलाने।

0: साथियों, सुना आपने बैरू भौजी को, जिन्होंने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बताया कि अगर हमारे खेतों में कोई भी समस्या होती है तो उसके निजात पाने के लिए हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल ना करके घर से बनी हुई जो खाद होती है, जो दवाई होती है, जो हम नेचुरल तरीके से बनाते हैं, उनको हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर पैदावार पैदा कर सकते हैं।
1: भैरव भौजी ने कितने अच्छे तरीके से जैविक खेती के बारे में बड़े अच्छे तरीके से समझाया और जो भी गिला शिकवा थे वो भी हमें दूर हुए। लेकिन हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ तक भैरव भौजी तक सवाल सीमित नहीं है, यहाँ पर सवाल आते हैं हमारे किसान साथियों के, क्योंकि किसान साथी जैविक खेती इस बुंदेलखंड क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं। उनके पास आपको ले चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं कि किसान अपने खेती की लागत इतनी ज्यादा लगाता है और उसके लिए कर्ज करता है। कर्ज होने के बाद साथ साथ में आज हम बैंकों की स्थिति देखते हैं, तब पता चलता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकलती है पूरे साल भर खेती करने के बाद। तो ये सारी पीड़ाओं को हम दूर करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, जैविक की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं और जानते हैं कि जैविक खेती क्या है, लेकिन कुछ विराम के बाद।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे दोस्त आराधना और बात करेंगे आज जैविक खेती क्या है। ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवार नाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग ना करते हुए जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाता है, उसे जैविक खेती कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
4: ब्रजनंदन पाल कैना से।
1: ब्रजनंदन जी, आपने जैविक खेती के बारे में तो सुना होगा, तो जैविक खेती से लाभ क्या है?
4: जैविक खेती से लाभ यही है कि मतलब कुछ इनकम ज्यादा आती है उसमें, अपन को फायदा, जैसे मूंगफली है, मूंगफली उखाड़ी, उसको थोड़ा बेचने के कंपनी, तो इसी के बारे में थोड़ी।
1: अच्छा, तो आपको कुल मिला के ज्यादा मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। एक चीज और जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जैविक खेती करके अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं?
4: नहीं कर सकते।
1: चलिए, और आय को हम बढ़ा सकते हैं?
4: आय देखो, महंगाई तो बढ़ रही है, जमीन के ऊपर है, ऐसी तो थोड़ी ना बढ़ेगी, कुछ अलग तरीके की खेती करें तभी तो आय बढ़ेगी।
1: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए।
5: सुरेंद्र पाल कहना।
1: अच्छा सुरेंद्र पाल जी, आप जैविक खेती के बारे में जानते होंगे, तो जैविक खेती से लाभ क्या है, आपके हिसाब से क्या लगता है लाभ क्या है?
5: हाल की स्थिति में तो जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गए, उड़द हो गए, चना हो गए, जैसे मूंगफली हो गई, तिली हो गई, सोयाबीन हो गया, उड़दा हो गया, मूंग हो गई।

0: जैविक खेती के उत्पादन में।
1: हाँ, तो ये उत्पादन है, तो अगर इससे तो ये है, अगर मान लो 2-4 बीघा जमीन है किसी के पास, तो इस चीज से कोई लाभ नहीं है।
0: अच्छा, जैविक खेती करके हम अपनी खेती की लागत को कम कर सकते हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: अपने हिसाब से यह है कि जैसे वो अपने हाथ में तो है नहीं, अगर बरसात सही तरीके से अगर हो गई तो अपन लाभ ले सकते हैं। अगर बरसात नहीं हुई, किसी के कुएं में पानी नहीं है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, मान लो हम या आप ही हो गए कि भगवान के भरोसे रहते, अगर अभी पानी खुल गया तो मूंगफली में कुछ नहीं है, अगर बरस गया तो सब।
0: एक वर्ष आखिरी सवाल है कि जैविक खेती करके हम अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं आपके हिसाब से, चूंकि आप खेती करते हैं।
1: खेती करके मान लो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं कि अगर कुआ अंदर पानी है तो टाइम से बो दिया, टाइम से पानी दे दिया और टाइम से खाद बीज लगा दिए, तो अच्छी फसल उपजाऊ होगी, तो अपन उससे लाभ ले सकते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: तो क्या
0: अच्छा लगा
1: बता
0: लाला
1: सकते
0: राम
1: हैं?
0: जी आपसे बात करके, धन्यवाद।
1: हमारा नाम है रईस यादव, लिधौरा निवाड़ी विधानसभा से बोल रहे हैं।
0: अच्छा रही जी, हम जानना चाह रहे हैं कि जैविक खेती जो होती है उससे करने से क्या लाभ है?
1: उससे ये लाभ है कि सबसे जल्दी पौधा अपना होता है, जो जो भाटा है, टमाटर है, आलू है, जल्दी तैयार हो जाते हैं उससे। अच्छा, जो गोबर खाद सा है, गोबर खाद का मतलब जैविक खाद में थोड़ा मतलब बीमारी टाइप का तत्व रहता है, इसमें निर्दोखल रहता है, मतलब गोबर खाद,
0: अच्छा
1: जिससे आदमी बीमार कम पड़ते हैं।
0: अच्छा आपको रही जी क्या लगता है कि जैविक खेती करके खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं आपके हिसाब से?
1: धीरे धीरे होगा, वो तो जैसे अपन को थोड़ी मात्रा में कम खाद दो इस साल, फिर पर साल अगले कम दो, और गोबर जो मान है गौ माता का, ये ज्यादा मात्रा में देते जाओ, इसके बाद जो जैविक खाद देना बंद हो जाता है और फसल होने लगती है, फिर
0: अच्छा, जैविक
1: वो भी।
0: खेती खेती करके अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं क्या, आपके हिसाब से क्या लगता है?
1: हाँ, जैविक मतलब खाद से तो बढ़ती है वाला है,
0: आय बढ़ती है, कैसे
1: आय
0: बढ़ती
1: बढ़ती
0: है?
1: है उससे, मतलब ऐसे है कि जैविक खाद अच्छी जैसी मात्रा में हर गुड़ाई जो खाद छिड़कते हो अपन,
0: अच्छा,
1: पानी देते रहो, बढ़िया फल फूल, बढ़िया टुकाई चलेगी उसकी।
0: धन्यवाद भाई
1: हाँ,
0: साहब।
1: ब्रज किशोर कुशवाहा।
0: अच्छा ब्रज किशोर, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो जैविक खेती होती है आपके हिसाब से उससे को करने से क्या लाभ है?
1: हमें पता नहीं है,
0: जानकारी नहीं है जैविक खेती की?
1: नहीं है जानकारी सर।
0: अच्छा, जैविक खेती करके लागत को कम कर सकते हैं अपन लोग?
1: अब जी हमें पता नहीं है सर।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष
2: लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: साथियों, अभी आपने सुना कुछ किसानों की बातचीत को, जिनकी बातों से बिल्कुल पता चल रहा था कि कुछ किसान साथी हमारे ऐसे हैं जिनको जैविक खेती के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर जैविक खेती क्या होती है। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे हैं जिनको पता तो है कि जैविक खेती क्या होती है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैविक को करने से हमारी फसल सही नहीं होगी या हमारी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी। उनके अपने मन में जो भ्रांतियां चल रही थी, आइए इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको सीधा ले चलते हैं विषय विशेषज्ञ के पास, लेकिन एक गीत सुनने के बाद
4: जी।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और साथियों, आप अभी आपने कृषि से जुड़ा इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सीधा ले चलते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ के पास और जानते हैं जैविक खेती के उन सारे किसानों के जो सवाल थे, उन सवालों के जवाबों।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
0: सर, मानना क्या है कि किसानों को जैविक खेती अगर इस क्षेत्र में देखा जाए, सर मध्य प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे जहाँ पर लोग जैविक खेती करना ही नहीं चाहते, जब हम किसानों से बात करी वो नहीं करना चाहते हैं, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, एक बहुत वैसी बात हम आपको बता रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरा विश्व आने वाले समय में जो खाद्यान्न संकट से गुजरने वाला है। 2050 तक पूरे विश्व की आबादी लगभग 10 अरब हो जाएगी, उसमें भारत की आबादी लगभग 1 अरब 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होगी कि हमको उत्पादन शक्ति बढ़ाना होगा और ताकि हम सभी लोगों को खाना उपलब्ध करा सकें। और जहां तक इस कृषि पद्धति की बात है तो इसे तो अपनाना ही होगा और इसके लिए उन्हें सहजता से उनके साथ संपर्क करके जो विशेषज्ञ लोग होंगे, कृषि विशेषज्ञ लोग होंगे, और उनसे मिलना होगा और उनको इसके जो फायदे हैं वो बताना होगा। तो जो स्थायी कृषि है, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्योंकि इसका इसके कई नाम से जानते हैं जाना जाता है, जैसे सतत खेती, पोषणीय खेती, प्राकृतिक खेती, परमा कल्चर, तो इसमें ये सेट ही है एक तरह से। आप देखिए, ये पद्धति का सेट है तो जो कि 3-4 शर्तों को पूरा करता है कि पर्यावरण का सम्मान करेगा, ये सम्मान होगा इसमें, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हो जाएगी, किसानों का उचित और पर्याप्त आय भी सुनिश्चित होगा इसमें।
0: बिल्कुल।
2: और चूंकि वर्तमान में भू स्तर, जो जल का स्तर है वो गिरता जा रहा, ऑर्गेनिक कार्बन की भी मात्रा कम होती जा रही है, और भारत की जो कृषि पद्धति है या खेती हो रही है उसमें हमेशा से नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो कमी है वो हमेशा से रही है, तो इसकी पूर्ति करने के लिए लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प के तौर पे उन्हें प्राकृतिक खेती, ये अस्थाई कृषि अपनानी होगी और उसके फायदे उनको दिखेंगे। और चूंकि तुरंत उसका फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद निरंतर वो 3-4 साल तक अगर उसको प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर उसको उनका फायदा दिखने लगेगा।
0: सर, आपका मानना क्या है कि जब हम जैविक खेती की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर रासायनिक खेती की बात करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है आपके हिसाब से?
2: जी देखिए, रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती में हमेशा जो संश्लेषित या कह सकते हैं हमेशा रसायनों का प्रयोग करके जो खाद बनाई जाती है और कीटनाशक बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। उनके प्रयोग से आप अंततः देखिए मनुष्य को ही नुकसान हो रहा है। आप बहुत सामान्य तरीके से इसको समझा जा सकता है कि जो यूरिया, डीएपी, एमओपी, ये सारे जो रासायनिक खाद है उनको डाला जा रहा खेत में, हर साल हर फसल के दौरान डाला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उसकी जो अन्य जो नकारात्मक

0: नकारात्मक तत्व है उसमें, वो मिट्टी में बढ़ते चले जाते हैं। और जब कोई पौधा हम लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उस पौधे की जड़ में, उसके तने में, उसके फल में, उसके फूल में, सभी में वो अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जब हम उसको, अगर कोई जानवर भी उसको खाता है और उसके शरीर में जाता है, उसका दूध हम पीते हैं, तो उसमें भी जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं वो हमें मिलते, तो हमारे शरीर में आ जाता है। हम डायरेक्ट जब सीधे तौर पे हम लोग उसका उपभोग करते हैं तो हमारे शरीर में वो नुकसानदायक पदार्थ आ जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन तत्वों का सांद्रण हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। ऐसे जो जैसे कुछ भारी धातुएं हैं, पानी, मृदा, वायु, सभी प्रदूषित होते चले जा रहे हैं इन कीटनाशकों और रासायनिक पदार्थों के अंधाधुंध प्रयोग से। इस तरह से जो सांद्रण बढ़ता है, चूंकि वो पता नहीं चलता है, लेकिन ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है खाना पीना, तो ऐसे में हमारे शरीर में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। इसको हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक वैज्ञानिक टर्म है। तो इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर में एक स्तर तक पहुंच जाता है, और जब एक स्तर से ऊपर हो जाता है तो उससे नकारात्मक प्रभाव उसके दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जो इस समय आपको समाज में बहुत आसानी से दिख जा रहा है। सभी लोग किसी न किसी समस्या से ग्रसित होते चले जा रहे हैं खान पान की वजह से।
1: जी, अगर सर अगर फायदे की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो सर इसका जैविक खेती का फायदा क्या है? क्योंकि अभी अभी रासायनिक जो हम लोग खाद डालते हैं उसका हमने नुकसान बताया है, फायदा क्या है जैविक खेती का?
0: जी, इसके अनेक लाभ हैं। और उसमें सबसे पहले आप ये देखा जाएगा कि मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हो जाएगी,
1: जी
0: उसमें जो पोषक तत्व है उसका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा।
1: जी
0: और जब इनका संतुलन लंबे समय तक बना रहेगा तो जो लाभदायक जीव होगी, और ऐसे टिकाऊ खेती में फसल का उत्पादन भी ज्यादा होगा और पशुओं का पालन पोषण भी अच्छे से किया जा सकता है। क्योंकि हानिकारक रसायन और कीटनाशक के प्रयोग से पर्यावरण पे अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, और जबकि उसके विपरीत जब आप टिकाऊ और ये प्राकृतिक खेती की जाएगी तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं दिखेगा। और टिकाऊ खेती करने पे देखिए लागत भी बहुत कम आती है
1: जी सर
0: और पर्यावरण में प्रदूषण तो कम होगा ही,
1: जी
0: साथ
1: सर
0: साथ उत्पादन के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ का भी उत्पादन होगा। और अंत में मैं यही कहूंगा कि
1: जी
0: अस्थायी कृषि लाभदायक होना चाहिए।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है सर कि हमारे किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों
0: जी
1: के उनको अच्छे तरीके से जो आपने का जवाब जो दिया है का सर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सक्रिय श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपके आरजे वर्षा, और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती से होने वाले लाभ क्या क्या हैं। जी हाँ, भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। जी हाँ साथियों, तो जाना कि जैविक खेती करने से कितने सारे लाभ होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम को। और साथियों, अभी हमने जाना हमारे विषय विशेषज्ञ संजय कुमार जी से हमारे श्रोता साथियों और साथ साथ में किसान साथियों के जो सवाल थे उन सवालों के जवाबों को जाना, और जाना कि हम जैविक खेती से किस तरीके से लाभ ले सकते हैं और कैसे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ में अपनी खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं।
2: साथियों के मन में बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो चल रहे थे और उनके काफी हद तक उनको जवाब भी मिल चुके होंगे। लेकिन श्रोताओं, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल चल रहे हैं तो हमेशा की तरह हमारा नंबर नोट करिए, क्योंकि हमारा नंबर जो है वो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। जी हां श्रोताओं, उसके लिए आपको लिखना होगा हमारा नंबर जो है 9219207949। श्रोताओं, आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आप हमें पत्र के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। साथियों, अब समय हो चला है कार्यक्रम में सवालों का। जी हाँ, हम आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और जिसका देना होगा आपको सही जवाब। अगर आप देते हैं सबसे पहले और सही जवाब तो आपको मिलेगा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 की तरफ से एक खूबसूरत सा उपहार। तो साथियों आप तैयार हैं ना इनाम जीतने के लिए? चलिए जानते हैं हमारा आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? ये हमारा आज का सवाल है। और श्रोताओं, पिछले कार्यक्रम का हमारा जो सवाल था, स्थायी खेती से क्या खेती की लागत कम की जा सकती है, ये हमारे कार्यक्रम का सवाल था। और जिसका सही जवाब देने वाले हैं डालचंद कुशवाहा जी, और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सबसे पहले और सबसे सटीक शब्दों में सवालों का जवाब इन्होंने दिया है। तो इनको रेडियो बुंदेलखंड की तरफ से खूबसूरत सा उपहार जल्दी जल्द पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतने ध्यान से सुनने के लिए और हमारे सवालों में जुड़ने के लिए। आज का सवाल यानी कि कार्यक्रम का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सवाल है, क्या हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए? तो आज के इस सवाल से उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब देंगे, उनको हम अगले कार्यक्रम में उनके नाम के साथ शामिल करेंगे। चलिए श्रोताओं, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी आपकी और हमारी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की इजाजत।
2: आपकी और हमारी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।
4: शुभ कर्म, बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम तमाम प्रकार की तरह तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी चले आ रहे हैं। और कई दिनों से हम ये देख रहे हैं बहुत सारे हमारे श्रोता साथी हमें पूछते हैं कि सर कहीं पर अगर वैकेंसियाँ निकले तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे बेरोजगार हमारे युवा साथी ये भी कहते हैं कि नौकरी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में हमारे श्रोता साथी क्या कर सकते हैं, क्या एक उपाय होना चाहिए, क्या उपचार होना चाहिए इसका, कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर यानी भविष्य बना सकते हैं। 12वीं की परीक्षा के परिणाम भी आ चुके हैं और हमारे विद्यार्थी साथी युवा साथी अब असमंजस में रहते हैं कि हमें आगे चलकर कौन सा विषय चयनित करना है, कौन सी पढ़ाई ऐसी करनी है, क्योंकि हाल में ही हमने देखा है कि बहुत सारे युवा साथी जिस तरीके की ट्रेंड चल रही है कि हमें बीटेक या एमटेक या फिर तमाम प्रकार के जो विषय रहते हैं उसमें अपना कैरियर भविष्य देखना चाहते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्षमता है, कौन सा ऐसा ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है जिसमें हम अपने हुनर दिखा सकें, जिसमें अपना भविष्य बना सकें। हमें बस सोचना ये होगा कि हमें क्या अच्छा लगता है, कौन सी पढ़ाई अच्छी लगती है। हाल में हमने देखा एक हमारे युवा साथी आए और हमसे कहने लगे कि आप हमें बीटेक में एडमिशन करा दीजिएगा, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि ये बीटेक सिफारिश से नहीं आपके टैलेंट से एडमिशन होते हैं, क्योंकि आजकल जो कट ऑफ होते हैं और जो मेरिट जाती है वो बहुत हाई जाती है। आपकी पढ़ाई, आपकी क्षमता जो आपकी है वो देखते हैं। हमने उनको, हमारे एक साथी हैं, उनसे हमने काउंसलिंग कराने के बाद ये नतीजा निकला कि हमें तो अकाउंटेंट में बहुत अच्छा अनुभव है, हम उसमें रुचि भी रखते थे लेकिन हम भटक गए हैं। तो ऐसे हमारे युवा साथी कभी नहीं सोचें कि हमें किस चीज़ में कौन कहाँ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उसका ध्यान ना देकर अपना भविष्य अगर बनाना चाहते हैं तो हो अपनी सोच और जिस विषय में आपके हुनर है उस विषय को लेकर आगे जाइएगा। बहुत सारे

वैकेंसियाँ उसी में निकलती हैं, बहुत सारा भविष्य उसमें दिखता है। आज हम साथियों, हम कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में खुला आसमान चूंकि कार्यक्रम जाता है, वैकेंसियाँ रहती हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे विद्यार्थी साथी हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन समस्या उनको पैसों की आती है। तो पैसों की समस्या के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, बहुत सारे स्कॉलरशिप आते भी हैं, मिलते भी हैं, और अपना वो कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पास बडी फॉर स्टडी से बहुत सारे स्कॉलरशिप के लिए, भविष्य बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप अलर्ट जारी होता है, उसको आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने युवा साथियों से कहना चाहते हैं, यदि आप एग्ज़ाम जो राष्ट्रीय परीक्षा होती है उसमें आपने पास कर लिया है, तो उसके लिए ऑल इंडिया अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एंटेंट एग्ज़ाम 2026 एक राष्ट्रीय परीक्षा है जिसे पूर्व स्नातक छात्रों को सरकारी स्कॉलरशिप देने के लिए बनाया गया है। यह उन छात्रों के लिए है जो इंजीनियरिंग यानी बीटेक, बीई और मैकेनिकल कोर्स एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उनमें आर्ट्स और कॉमर्स के पाठ्यक्रम भी शामिल है। आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं। आवेदन उन सभी छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा में न्यूनतम परीक्षा प्रतिशत और ग्रेड हासिल किए हैं। उसके लिए प्राइज मनी जो रहता है, रिवॉर्ड्स जो रहते हैं, वो है 2,00,000 तक का वार्षिक स्कॉलरशिप और एक प्रमाण पत्र। इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आपको www.b4s.in/rv/aiug1 ये URL नंबर है, उस पर जाकर आप क्लिक करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म भी अपना इसमें डाल सकते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप है वो है CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27। CBPS रिसर्च फेलोशिप 2026-27 सेंटर फॉर बजट एंड पॉलिसी स्टडीज़ द्वारा पूर्व स्नातक छात्रों को प्रदान की जा रही है। इसका उद्देश्य है कि स्कॉलर्स को शिक्षा, लिंग शासन, स्वास्थ्य, पोषण, सार्वजनिक वित्त, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने रिसर्च कौशल को बेहतर बनाने के लिए सहायता की जाती है। यह फेलोशिप उन छात्रों के लिए जारी है जिन्होंने बैचलर डिग्री पूरी कर ली है या जो अपने पूर्व स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। उनके लिए 25,000 तक का मासिक स्टाइपेंड और अन्य लाभ भी इसमें शामिल हैं। इसके लिए हमारे श्रोता साथी, इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लिंक है www.b4s.in/rv/cbbs1, इस पर अपना फॉर्म डाल सकते हैं। अगले आगे बढ़ने से पहले, स्कॉलर को आगे सुनने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, एक छोटे से गीत को सुन लेते हैं। इसके बाद और भी हमारे साथ स्कॉलर अलर्ट के फॉर्म जारी हैं, किस तरीके से हमारे युवा साथी भर सकते हैं उस पर भी हम जानकारी देंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में। अभी आपने सतीश जी और उनके साथियों की आवाज़ में इस प्यारे से गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। आगे बढ़ते हैं और हम स्कॉलर अलर्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। तो अगला है कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27। इसका कोटक एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा संचालित कोटक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026-27 जो कि कोटक महिंद्रा ग्रुप की CSR क्रियान्वयन एजेंसी है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय एवं शैक्षणिक सहायता प्रदान करता है जिन्होंने SSC, CBSE और ISCE बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण की है। चयनित अभ्यर्थियों को 21 महीने तक प्रति माह है 3500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसकी कुल राशि 73,500 रुपये होगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को मेंटरशिप और शैक्षणिक सहयोग, कैरियर मार्गदर्शन एवं एक्सपोजर विजिट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा जारी कर सकें। आवेदकों को वर्ष 2026 में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा SSC, CBSE और ICSE में कुल मिलाकर न्यूनतम 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। आवेदकों ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र के जूनियर कॉलेज स्कूल में कला, वाणिज्य या साइंस स्ट्रीम में कक्षा 11वीं में प्रवेश लेना आवश्यक है। आवेदक छात्र के माता पिता की वार्षिक आय 3,00,000 या उससे कम होनी चाहिए। विद्यार्थियों का वर्तमान निवास मुंबई महानगर क्षेत्र में के अंदर होना चाहिए। कोटक एजुकेशन फाउंडेशन तथा बडी फॉर स्टडी के कर्मचारियों के बच्चे आवेदन के पात्र नहीं हैं। कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के दौरान प्रतिमाह 3500 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। 21 महीनों के लिए कुल छात्रवृत्ति 73,500 निर्धारित है। इसके साथ विद्यार्थियों को मेंटरशिप सहयोग, शैक्षणिक सहायता, कैरियर मार्गदर्शन, एक्सपोजर विजिट्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसकी अंतिम तिथि है 30/6/2026। इस स्कॉलरशिप के इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आगे दिए गए लिंक, जैसे कि www.b4s.in.rv/kjsp4, इस लिंक पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है साथियों, मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप एम्पटीट्यूट टेस्ट 2026। यह प्रौद्योगिकी एवं व्यवसाय प्रबंधन, मनोवैज्ञानिक एवं विपणन और वित्त एवं अर्थशास्त्र, डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर बनाने वाले उच्च योग्यता, उच्च संभावनाओं से उक्त उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अवसर है। वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष प्रवेश के साथ साथ ट्यूशन शुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करता है। आवेदक वर्तमान में 12वीं कक्षा या किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड में नामांकित अथवा वर्ष 2025 में पूर्ण कर चुका हो। व्यवसाय प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, डेटा साइंस एवं AI डिजाइन, वित्त एवं अर्थशास्त्र, मार्केटिंग या फिर संलग्न क्षेत्रों में पूर्वकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम अध्ययन के इच्छुक हों। मूल्यांकन आवश्यक सभी आवेदकों को मास्टर्स यूनियन स्कॉलरशिप टेस्ट में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। डेटा साइंस एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक पात्रता JEE में 90% से अधिक होनी चाहिए।
MUSAT स्कोर्स 35 यानी 45 में 35 से अधिक होना चाहिए, SAT का स्कोर 1500 से 1600 से अधिक होना चाहिए, 10% से 80% शुल्क में छूट छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं, इसके लिए www.b4s.in/rv/musCASP। अगला छात्रवृत्ति है वो वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 है। द वीवो पंजाब विद्या सेतु स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 विगर मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की CSR की एक पहल है। पंजाब चंडीगढ़ के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले पूर्व स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता सहयोग प्रदान करती है। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में सामान्य एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जारी यह कार्यक्रम शैक्षणिक उत्कृष्टता को पोषण तथा समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। छात्रवृत्ति पंजाब चंडीगढ़ के निवासियों और पंजाब चंडीगढ़ अधिवास पात्रता प्रमाण पत्र होने चाहिए। सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों से पूर्णकालिक पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन होना चाहिए। आवेदकों को कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 70% से अधिक अंक होने चाहिए। माता पिता की वार्षिक आय सभी आय स्रोतों को मिलाकर 8 लाख से अधिक नहीं होने चाहिए। छात्रों, दिव्यांगजनों, एकल अभिभावकों और बच्चों, अनाथ बच्चों, प्रथम पीढ़ी कॉलेज स्नातक छात्र को वीरता दी जाएगी। चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में सामान्य स्नातक के लिए 30,000 रुपये और व्यावसायिक स्नातक के लिए 60,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप www.b4s.in/rv/vpvssp इस पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये थी हमारी स्कॉलरशिप जहां पर हमारे युवा साथी अपना भविष्य बना सकते हैं। वक्त हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का, जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो कार्यक्रम आपको

कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे इस पते पे। पता है हमारा रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम और चतेकला के पास ओरछा, और हमारा फ़ोन नंबर 92-19-20-77-49। साथियों यदि आपको लगता है कि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेडियो बुंदेलखंड के इस नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी आपको युवा साथी या हमारे स्कूल छात्र छात्राएं विद्यार्थी यदि किसी विषय को लेकर आप चयनित नहीं कर पा रहे हैं तो सहायता आपको हम लोग कर सकते हैं आपका मार्गदर्शन देकर। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे श्रोता साथी को यह कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ये तो भूल लगो बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना
1: कितना
0: कल तक।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहन हो आपके अपने रेडियो साथी मनीष कार्यक्रम खेत खलियान में बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे किसान साथी उनको बता दे, वो चाहते हैं कि आज के हमारे जो कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम में आज बतकाव करवे जा रहे हैं कि हमारे किसान साथी कैसे हैं। ऐसे में किसान साथी टमाटर की नर्सरी कौन तरीके से कर सकते हैं, अब ऐसे खेत की तैयारी कर लेवे और कौन तरीके से हमारे किसान साथी कौन सा बीज लगा सकते हैं, बाबे साहब बतकाव करेंगे। आपको बता दे, वो चाहते हैं कि खेत कल्याण कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बतकाव को लेकर आते हैं और हमारे किसान साथियों को वो छोटी सी छोटी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों की आय को दुगनी करवे के लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। खासतौर पर देखो जा रहा है कि अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में अब खंड खंड वर्षा होती हैगी और ऐसे में किसान साथी हमारे बहुत सारे किसान साथी जो खेती पर आश्रित रहते हैंगे, तो ऐसे में हमारे किसान साथी का कर रहेंगे। तो खेती के संगे संगे चूंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में जा वक्त बहुत ज्यादा धूप पड़ रही हैगी और हमारे किसान साथी फ्री बैठे हुई हैं, तो अब किसान साथियों को अगली फसल की तैयारी कर लें चजित और अपनी आय तबई दुगनी हुए जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि खेत खाली हैंगे अपन नर्सरी भी कर सकते हैंगे और संगे संगे हम अपन फलदार वृक्ष भी अपन लगा सकते हैं अपने और नर्सरी भी लगा सकते हैं, फूलन की नर्सरी भी लगा सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे विकल्प है खेती किसानी में जो हमारे किसान साथी करके अपनी आय को

बढ़ा सकत हैंगे। तो आज हमारे संगे विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सिंह जुड़ेंगे और वो बतकाव करेंगे और बताएंगे कि जब गर्मी के मौसम में हमारे किसान साथी कैसे अपनी टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, कौन सा बीज और का का ध्यान रखें चाहिए, किस तरीके से मट्टी को बनाना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, पूरी जानकारी जो कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे अपन। लेकिन जैसे पहले अपन कैसे मौसम आधारित अपन खेती करत हैंगे और मौसम का कुछ ठिकाना ही नहीं रहता है कि कब बरसात हो जाए, कब जहाँ धूप न करे, ऐसे में हमारे किसान साथी आप का करवे तो मौसम आधारित खेती करवे कार्यक्रम को आगे बढ़ात भय अपन एक 900 लोकगीत सुन ले रहे हैं और जाके बाद हम अपने विषय विशेषज्ञ के पास आपको लुवा चले और उनसे जाना है कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से टमाटर की नर्सरी को खेती कर सकते हैं, कौन वैरायटी अपने खेतन में लगा सकते हैं। तो आओ सुनते हैं जो 900 लोकगीत को।

कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और अबे अपन ने जो 900 लोकगीत को सुनो, लोकगीत को आनंद लाओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ा तो भाई अपने विषय विशेषक के पास आपको लुआ चला थेंगे और उनसे जाना थे कि टमाटर की नर्सरी हमारे किसान साथी कौन तरीके से लगा सकते हैं, का सावधानी उनको बरतने चजित आओ सुनते हैं जा चर्चा को। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे किसान साथी कौन तरीके से, अब चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो टमाटर की बहुत ज्यादा महंगाई भी हैगी, टमाटर की नर्सरी कैसे लगा सकते हैं, कौन कौन बातन को उनको ध्यान में रखें चजित।
1: टमाटर हमारे भारतवर्ष के उत्तरी मैदानों में काफी खेती की जाती है और लगभग पूरे वर्ष भर इसकी मांग बाजार में बनी रहती है। तो अब आप देखें, अगर हमारे किसान भाई जो कि फरवरी मार्च की खेती कर रखे हैं, अब वो फसल धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है, तो अब मैदानी क्षेत्रों में जो टमाटर है अब इतनी गर्मी के कारण पकता है तो बिल्कुल लाल भी नहीं होता है, आप देखेंगे हल्का लाल रंग का बन जाता है, बस उसी पे तुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि टेम्परेचर जब 40 डिग्री ऊपर होने लगता है तो उसमें पिगमेंट ही नहीं बनता है लाल रंग का लाइकोपिन, इस वजह से वो टमाटर लाल नहीं होता है। तो ये गर्मी का प्रकोप है, उसकी वजह से लाल नहीं बनता है। तो इस वजह से अब ये धीरे धीरे, वैसे भी वो फसल समाप्ति की ओर है, तो अब हमारे किसान भाई ये देखें, अब अगली फसल की तैयारी उनको करने का समय आ रहा है कि अब नेक्स्ट टमाटर की जो खेती उनको करनी है, तो उसके लिए आपको अभी से तैयारी सोचनी है, हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, किस किस्म का चुनाव करना है और किस तरह से उसके नर्सरी की तैयारी।

तैयारी करनी है तो इस बातों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप अभी से चुनाव करके उन किस्मों का चयन करके अपने पास उसके बीज उपलब्धता कर लेंगे तभी तो आप नर्सरी बनाएंगे, फिर आपकी फसल अच्छी होगी। तो आप देखें ये जो हमारा आने वाला समय है उसमें एक बीमारी बहुत तेज आती है टमाटर के अंदर में हमारे उत्तर भारत के मैदानों में, जिससे काफी क्षति पहुंचती है। उसको हम लोग पर्ण कुंचन रोग बोलते हैं टमाटर में, अंग्रेजी में लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है इस सीजन की खेती में, जो कि फरवरी मार्च वाले में कम होता है। तो और या तो फिर जो आपका समय है आप अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ये जून जुलाई वाला मौसम, जुलाई अगस्त में जो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई आप करते हैं, इसमें अधिक से अधिक आपका ये पर्ण कुंचन रोग आने की संभावना होती है। तो आपको इस समय ये ध्यान रखना है कि जो किस्म का चुनाव आप करेंगे, वैसे तो टमाटर की खेती में बहुत सारी किस्मों का आपके लिए उपलब्ध है, लेकिन आपको ये विशेष ध्यान इसीलिए मैं आगाह कर रहा हूँ कि जो पर्ण कुंचन रोग से रोधी किस्में हैं उनका ही आप चुनाव करें तो इस सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। और अक्टूबर के मौसम के लिए तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, उसको आप खेती कर सकते हैं। तो आप जब अभी बुआई की बात समय जो हम कर रहे हैं कि आप जून, मध्य जून से लेकर के पूरा जुलाई में आप इसकी नर्सरी की टमाटर की डालेंगे तो उसके लिए जो उपयुक्त किस्में हैं कि आप देखें पंजाब से हमारे जो कुछ किस्में निकाली गई हैं जो कि काफी बहुत ही अच्छी हैं और उनकी उपज भी अच्छी मिलती है और उनका साइज भी 80 से 90 ग्राम तक का होता है हर टमाटर का और लाल रंग के होते हैं और इसमें सीमित बढ़वार वाली फसल है तो जिससे आपको बहुत ज्यादा ये सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है चढ़ाने की, तो आप खुले खेतों में उसकी खेती कर सकते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट वाला बोलते हैं। तो उसमें पूसा बरखा एक, पूसा बरखा दो और पूसा बरखा चार, ये जो तीन किस्में हैं हमारे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने निकाली है जो बिल्कुल ही लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। और इसी क्रम में हमारे जो भारतीय कृषि अनुसंधान सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है वहां से भी दो तीन अच्छी किस्में निकाली गई हैं जो इस सीजन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसमें है काशी यमन, काशी विशेष, काशी अमृत और एक हाइब्रिड किस्म भी उन्होंने बनाई है अभी नई नई निकाली है, काशी अभिमान। तो ये जो चार किस्में हैं जो काशी से निकाली गई हैं और तीन किस्में आपको पंजाब से निकाली गई हैं, ये इस बरसात के मौसम में जो आपकी फसल आएगी उसके लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है। उसका कारण सिर्फ यही है कि इस सीजन में पर्ण कुंचन रोग का प्रकोप बहुत अधिक होता है, तो जो दूसरी किस्में लगाएंगे आप उसमें लगाएंगे लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टमाटर से कुछ खेती से आप लाभ ले पाएंगे। तो हमारे किसान भाई आप देखें अगर आप एक हेक्टेयर टमाटर की खेती लगाना चाहते हैं तो उसमें आपको 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त होता है, लेकिन हाइब्रिड किस्म अगर है तो उसका 200 से 250 ग्राम बीज ही पर्याप्त होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें और उसी हिसाब से आप इस बीज की मात्रा को अपने पास सुलभ कर लें और किस्मों का चयन कर लें। आप देखें जो खुले खेत हैं आपको टमाटर की खेती करनी है तो कम से कम आपको 10 क्यारी की आवश्यकता पड़ेगी, 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची। इस तरीके से आप 10 क्यारी बनाएंगे और हर क्यारी में लगभग 40 ग्राम के आसपास बीज की आप बुआई करेंगे तो आपके अच्छे पौधे तैयार होंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इसलिए सबसे पहले आपको भूमि शोधन करने की जरूरत है और भूमि शोधन दो प्रकार से होती है, एक तो यह है कि जो सौर हमारा इतना गर्मी का मौसम है इसमें खाली आप अगर नमी है तो उसमें डाल दें, अगर लेकिन उसमें एक चीज और डाल दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसा मैंने फॉर्मलिन आती है आपको, फॉर्मल्डिहाइड नाम से भी आती है बाजार में, तो आप उस दवा को ले लें और 25 ml दवा 1 लीटर पानी में इस हिसाब से घोल के आप पूरे क्यारियों के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर दें जिससे कि उसमें नमी बन जाए और नमी हो जाने के बाद जो सफेद पॉलीथीन की सीट आती है, चादर आती है, वो 15 से 50 माइक्रॉन वाली, उसको लेकर के आप उसको चारों तरफ से उसको ढक दें और साइड से इतनी मिट्टी से दबा दें साइड को कि उसके अंदर हवा पास न कर सके, बिल्कुल टाइट बंद कर दें, तो जो धूप पड़ेगी अंदर और नमी जो नीचे है उसके अंदर वाष्प पैदा होगा और वाष्प होने से जो अंदर की जमीन के नीचे फफूंद या कीड़े मकोड़े हैं वो स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। तो इससे काफी हद तक आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। तो आप जब इस तरीके से कर रहे हैं उसके बाद आप उस पॉलीथीन को हटाएं, पॉलीथीन हटाने के बाद एक हफ्ते तक

0: पॉलिथीन को ढके रखिएगा, उसके बाद हटाएं। हटाने के बाद उससे थोड़ा सा फावड़े से लेकर के मिट्टी को खोल दें, हल्का सा गुड़ाई कर दें, तो जिससे उसके अंदर जो गैस भरी हुई है दवा की, वो धीरे धीरे 4-5 दिनों में निकल जाएगी। उसके बाद फिर आप खेत की तैयारी करें और उसमें हर क्यारी में 15 से 20 किलो सड़ी गोबर की खाद आपके पास है या केचुए की खाद भी उपलब्ध है, तो जो भी है आप उसमें क्यारी में मिलाएं, और क्यारी में डालने के बाद उसमें हर क्यारी में 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी उस क्यारी में मिलाएं, छिटक दें मिट्टी में, और संभव है तो 10 ग्राम प्रति क्यारी फोरेट ये भी आप उसमें मिला सकते हैं, जिससे कि कोई जमीन में जो कीड़े होते हैं, कटुआ कीट होते हैं और कोई बोरर के कीट होते हैं, तो वो भी मर जाते हैं। तो इस तरीके से आपका खेत इसमें डाल करके बिल्कुल खेत को एकदम अच्छी से गुड़ाई करके घास खरपतवार निकाल करके बिल्कुल तैयार रखें और भुरभुरा हो बिल्कुल खेत, यह ध्यान रखना है। तो जब खेत बिल्कुल आपका तैयार हो गया और बीज शोधन, अगर आपने बाजार से बीज खरीदी है तो शोधित करके ही बीज आती है, अगर आपको शुद्ध बीज मिल रहा है बिना शोधित के, जिसका कि हल्के पीले कलर का बीज आपको दिखाई दे रहा है जो लगता है कि ये बिना ट्रीटेड है, तो आप चाहे तो उसमें कैप्टान 2 से 3 ग्राम 1 किलो बीज, जिसे आपने आधा किलो के आसपास ली है, तो एक चुटकी दवा सिंपल 1 से 2 ग्राम उसमें मिला करके बिल्कुल ऐसे ऐसे मिक्स करने के बाद तो वो बीज शोधन हो जाएगा उससे। फिर आप 5 सेंटीमीटर की कतारों में लाइनें निकालें हर क्यारी में और गहराई रखें 1.5 से 2 सेंटीमीटर की, तो उसमें फिर इस बीज को बुआई करें। बीज बहुत घना ना बोएं, इस बात का ध्यान रखें, और जब बुआई कर लेते हैं आप तो उसके ऊपर फिर सड़ी हुई गोबर की खाद का जो मिक्सर है उसके ऊपर से ऐसे फैला करके उसको बराबर समतल कर दें, बिल्कुल समतल रखें ऊपर, जिससे पानी दें तो ऊंचा नीचा ना हो, कहीं पानी ज्यादा ना हो, और बुआई करने के बाद सूखी हुई घास अगर आपके पास है या पराली है तो उसके ऊपर फैला दें अच्छे से। ये दो काम करती है, नीचे नमी को संरक्षण रखती है और ऊपर से तेज वर्षा वगैरह हो गई तो वो अधिक पानी से बीज इधर उधर न बह जाए उसको भी बचाती है। तो इस चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा बीज का जमाव होगा। एक बात और ध्यान रखें, गर्मी का दिन है, हो सके तो सुबह या सायं ही पानी दें, दिन में और पानी ना दें। कभी कभी क्या होता है हमारे किसान भाई कि अगर आपने सब कुछ सुरक्षात्मक ढंग भी अपनाया हुआ है और लेकिन फिर भी मौसम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो हमारे नर्सरी के अंदर कमर तोड़ वाली बीमारी जो डैम्पिंग ऑफ हम कहते हैं, तो वो आर्द्र गलन भी बोलते हैं, तो इस तरीके की बीमारी जो आ जाती है इससे पौधे जमाव के बाद नीचे गिरने लगते हैं, उनकी कमर टूट जाती है, बहुत पतली होती है। तो उसके लिए आप जब आप सिंचाई करते हैं सुबह या शाम करना है खाली सिंचाई, तो उस पानी में 20 ग्राम डायथेनियम 45 10 लीटर में पानी के हिसाब से घोल बना करके आप उसको जब सिंचाई करते हैं उसी में छिड़काव किया करें। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो आपने सड़ी हुई गोबर की खाद डाली हुई है अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम लगती है और नर्सरी के पौधे हमारे जो पीले दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें आप 0.3% यूरिया का घोल छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि 3 ग्राम यूरिया 1 लीटर पानी में घोल बना करके एक हल्की सी छिड़काव कर दें, तो जो पौधे हैं जो हमारी नर्सरी की पौधे उनकी रंगत पीले से उठ के हरे रंग की हो जाएगी और फिर पौधों की बढ़वार बढ़ जाएगी। तो ये आपके काफी अनुभव पे निर्भर करता है, आप उसको देख करके समझ करके तब इन चीजों का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा डायथिन भी नहीं डालें, अगर जरूरत है तभी डालें, नहीं तो सिर्फ आप पानी दें। और इस तरीके से आपका कम से कम 30 दिन की पौध 15 सेंटीमीटर के आसपास पौध हो जाती है जब, तो वो बिल्कुल रोपाई के लिए तैयार होती है। और उस पे आप ध्यान रखें, रोपाई से पहले 4-5 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देंगे, और फिर जब आपको पौध उखाड़नी हो उस दिन आप पानी दीजिएगा, और फिर पानी निकालने के बाद हर पौध को आप कम से कम डायथेनियम 45 में या फिर इमिडाक्लोप्रिड भी कभी कभी डालना पड़ता है, कभी आपको चूसक कीट के भी प्रकोप दिखाई दे जाते हैं नर्सरी के अंदर भी, तो आप इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा है ये 3 ml दवा 10 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करेंगे, तो इससे किसी भी तरीके की चूसक वाले या अन्य कीट का प्रकोप नर्सरी में नहीं होगा और स्वस्थ पौध की उत्पादन होगी, जिससे अधिक से अधिक पौधे आपके मेन खेत में जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनका एस्टेब्लिशमेंट अच्छा होगा और फिर अधिक से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत कल्याण में। और साथियों, अब अपन ने डॉक्टर साहब से कितनी महत्वपूर्ण जानकारी को सुनो है गो, और अपन ने जानो के कौन तरीके से हमारे किसान साथी नर्सरी कर सकते हैं, टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं, और संगे संगे कौन कौन सी वेरायटी हो सकते हैं, उनने पंजाब की कछु वेरायटी बताई है, कच्छ वाराणसी की वैरायटी बताई हैं जो बहुत अच्छे आपको उत्पादन देंगे। तो ऐसे ही वैरायटी अपन समझने हैं, सोचने हैं, तब ही अपने खेतन में लगाने हैं। अब तैयारी करवो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और संगे संगे अपने खेत जो खाली पड़े हैंगे उनकी जुताई भी हमारे किसान साथी कर सकत हैंगे। हमें आशा है कि हमारे किसान साथी इन छोटी छोटी बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखें चाहिए उनको, कैसे आने वाला समय जो है बहुत महंगाई को हो जाएगा। कैसे अब अपन देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपन हो लगत लग जाते हैं, और मुनाफा अगर देखो जाए यानी उत्पादन देखी जाए तो बहुत कम हैंगे। अब कृषि विभाग की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही, योजना चलाई जा रही हैंगी, तो उनको भी अपन हो लाभ लेने, संगे संगे बीजन को चेंज जो अपन करते हैंगे तो कृषि विभाग की ओर से जो कृषि विस्तार अधिकारी रथ हैंगे उनके पास जाके अपन को संपर्क करने, उनसे पूछने हैं कौन तरीके के कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन तरीके से अपन को तैयारी करनी चाहिए। और संगे संगे एक महत्वपूर्ण बात और बतावा चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से अपन हो कि हमारे किसान साथी अभी चूंकि खाली खेत पड़े हैं तो अपनी मिट्टी को परीक्षण अवश्य करा ले, कैसे कौन से तत्वों की कमी हैगी जो पता चल जाएगा। अगर जो पता चल जाए तो अपन देख सकत हैंगे, समझ सकत हैंगे, और अपन जाकि भरपाई भी अपन कर सकते हैं कि कौन से तत्व की कमी है। अब जाकि तत्व को पूर्ति करने के लाने कौन सी दवा अपन हो डालना चाहिए, कौन सी अपना हो बीज लगाना चाहिए, तो जैसे सारी जानकारी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं। अपने पास फैसिलिटी हैगी, अगर अधिक जानकारी आपको पाने हैं तो केबी की चले जाओ कृषि विज्ञान केंद्र, उतर जाके बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी अपन हो उपलब्ध हो जाते हैं, उनसे भी पूछो, वैज्ञानिक रहते हैं उनसे भी सलाह लो, तभी अपना आने वाले समय में अपन अपनी आय को दुगनी कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। आप साथियों हम समय होते जा कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जावे को, तो कार्यक्रम आपको कैसो लगो हमें जरूर बताओ। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जा कार्यक्रम खेत खलियान से जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार, राम राम।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप ही ईवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज अपन मिले भैया ज्ञान सिंह यादव जी से और उनसे जाने विधा फाक के बारे में। तो ज्ञान सिंह भैया आज के कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अच्छा ज्ञान सिंह भैया जी, आपसे हम जो जान पूछा है कि आपको संगीत में लगन कब से लगी?
1: संगीत में लगन तो बहुत समय से लगी।
0: अच्छा, आप क्या साल कहते जब आपको याद हो?
1: समय का तो ये स्थिति है कि हमारी अधिकांश ये स्थिति बनी कि हमारी बुजुर्गन के बीच में बैठक रही है।
0: अच्छा,
1: तो उसी में जैसे कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भय, हाँ। कहीं फाग सम्मेलन, हाँ। कहीं भजन सम्मेलन, कहीं गोट सम्मेलन, कहीं कवि गोष्ठी हुई, तो उसमें सुनत सुनत में हमें भी ऐसी लगी कि इस कार्यक्रम से थोड़ा जुड़ा रहे, इसलिए फिर जो है थोड़ा बहुत मतलब उसमें रुचि रखी
0: आपने। अच्छा, आपने रुचि रखी तो आपको जो पता है कि आप जब के साल के हते जब आप?
1: वैसे तो हमारी सबसे ज्यादा पिताजी मतलब जी मुखिया रहे, जमींदार रहे।
0: अच्छा,
1: तो सबसे पहले बात हमें से होती, पिताजी से बाद में होती।
0: अच्छा।
1: खेत और खलिहान पे चले गए,
0: हाँ।
1: और जो भी आओ उन्होंने पूछी क्यों भैया पिताजी हैं, कहाँ गए पिताजी, कहाँ गए मुखिया जी, तो सबसे पहले हमारी बात होती। तो हर आदमी से हमारी मतलब एक जुड़ाव सुराव।
0: तो आपको लगन लगी। अच्छा, आपने सबसे पहला कौन सी चीज गाई आपको जो है ध्यान?
1: और ऐसी में तो ये स्थिति है कि जैसे मतलब हमारे पिताजी पहले रामायण पढ़ते।
0: अच्छा।
1: तो पूरे गांव के लोग, गांव में मतलब ये मुखिया भी रहते,
0: हाँ।
1: और रामायण रखे थे।
0: अच्छा।
1: तो सबसे पहले पिताजी जो है रामायण में रुचि रखते थे, हाँ। तो हमें सुनने में आई,
0: हाँ।
1: फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू भई, तो हम फिर रामायण से शुरू हो गए।
0: अच्छा, रामायण से आपने शुरू करी, तो आपको कोनो चौपाई ऐसी याद है? आज के साल हो गई आपको, कितनी उम्र है आपकी?
1: आप तो 62 साल की उम्र हो गई।
0: तो अब जब आपने रामायण पढ़ी हो गए, तो अब आज अपन कोनो चौपाई बता पाएंगे?
1: बिल्कुल बता दें।
0: कौन सी चौपाई आपको अभी तक याद रही?
1: आज जैसे भगवान बल्लभ जी रहे
0: जी,
1: और भगवान राम और कृष्ण रहे,
0: हाँ।
1: लेकिन उन्हें कुछ ऐसी चीजें लिख दी,
0: हाँ।
1: कि जिसके कारण मतलब बोलने,
0: हाँ।
1: से,
0: हाँ।
1: भी मतलब कुछ काम हो जाते हैं। तो हाँ। जैसे विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरत अस होई। इस चौपाई से बोलने से आदमी,
0: हाँ।
1: भूखा नहीं सोएगा।
0: अच्छा,
1: हाँ,

0: सच्चा चौपाई आपको अभी तक याद है?
1: बिल्कुल याद।
0: अच्छा जा तो भाई आपके घर की बात करें, आपके पिताजी रामायण पढ़ाते सो आपको ऐसे लगन लगी सो आपने रामायण में सच्चा चौपाई अभी तक याद रखी।
1: चौपाई तो और भी
0: और भी रहे हैं आपनों, लेकिन आप ई के अलावा रामायण के अलावा आपने कोनो जैसे के कीर्तन हो, कोनो भजन हो, कोनो भाग हो, तो आपको और का याद है?
1: तो जैसे एक पुरानी भाग है,
0: अच्छा
1: राजा मनु रानी शत्रुपा दी,
0: अच्छा
1: तो उनके नाम से किसी कवि ने एक भाग तैयार कर दी।
0: अच्छा
1: वो भाग जब हमने सुनी तो हमें भी लगी कि बहुत पुरानी भाग है जाए,
0: हाँ।
1: तो एक भाग भी हमने मतलब
0: अच्छा सुनी हाँ।
1: तो
0: वह कौन प्रकार से? अच्छा गा के सुनाओ।
1: राजा मन शत्रु की कथा सुनो चितलाय, जिनके सत उत्पानन पाए के भय ध्रुव जिया, तुमसे भाके कथा पुरानी सुनो गुनी जन ज्ञानी, देखो बुधपुरी सुख धाम राजा मन शत्रुपा बाम कन्या देवती है नाम जननी जिनके, ब्याई कदम इसके आए जिनके भय कपल मुन जाए, वेद पुराणन में जिसका छाए उनके।

जपत भय मन में तपके कारण तजिया आर बस गई है भीत हजार सुरपति आए बारम्बार काबे बार मांगो किले गए केवल तन में हार हर ने दह सिंहासन छा नफ से मल तूपी बार जीने तन त्यागी कृपा सिद्ध श्री के अमृत रूपी बानी दर्शन देवे।

0: आप समान पुत्र मोए दैयो मन में विनय बखानी। भगवान विष्णु कई बार आए तपस्या में, जब जो है राजा मनु और रानी शत्रुपा बैठ गए, अपने पुत्र का राजपाट सौंप गए और वन में तपस्या की लाइन चले गए। पहले ऐसी परंपरा आती कि कुछ दिन बालापन में, कुछ दिन जवानीपन में, कुछ राजभोग के, इसके बाद वन में तपस्या खा लोग भाग निकल जाते। तो इन्हें अपने राजा मतलब ने अपनी पद की उपाधि सौंप के अपने चले गए जी। तो राजा और रानी ये सलाह नहीं कर पाई कि अगर भगवान विष्णु हमें मिल गए तो कौन सा वरदान मांगे, जाता नहीं हो पाई।
1: अच्छा।
0: और इस बार में जब तपस्या में लौलीन हो गए तो भगवान विष्णु की सिंहासन देखने लगी कई बार क्षीर सागर में। तो नारद जी कहा भगवान विष्णु ने पहुंचाओ के देखो कौन सो तपसी तपस्या पे बैठो, हमारी सिंहासन बार बार दिखती है। तो नारद जी ने चल के देखा तो राजा और रानी तपस्या में लौलीन है, थोड़े गैप बना के एक दूसरे की चर्चा न सुन सके और अपने तपस्या में लौलीन रहती। इस बीच में जब नारद जी आए तो राजा मनु और रानी शत्रुपा ने सोची जी विष्णु भगवान है, क्यों देखा नहीं था। उन्हें पूछी आप कौन है, बोले हम तो नारद हैं। बोले हम तो समझा के विष्णु हैं, तुम कहां से यहां टपके। तो इस बीच में बोले आप कौन है, कैसे किसने तुम्हें बैठे। बोले हम भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा में बैठे हैं और हम विष्णु से। बोले क्या मांगना है, बोले नहीं हमको दर्शन पर्याप्त है, दर्शन मिल जाए। तो उन्हें की भाई विष्णु भगवान आएंगे दर्शन मिलेंगे आपको। और जी अपने तपस्या में लौलीन हो गए। तो नारद जी ने विष्णु भगवान का बताई कि दो भक्त बैठे राजा मनु और रानी शत्रुपा, वो भी आपके दर्शन चाहते। बोले दर्शन देने में क्या तकलीफ है। तो कई बार विष्णु भगवान, उन्होंने सोची नारद जी जैसे और कोई आ गए। तो विष्णु भगवान कई बार आए कि राजन नेत्र खोलो वरदान मांग लो, क्या मांगने हम विष्णु हैं। लेकिन उन्हें नेत्र नहीं खोले। जब बार बार सिंहासन दिखने लगी तो विष्णु भगवान परेशान हो गए, लक्ष्मी जी परेशान हो गई, सिंहासन बार बार दिख रही थी क्षीर सागर में। तो फिर एक बार भगवान विष्णु आए, बोले कर भाई राजन आज जो भी वरदान मांगने हो मैं मांगे वरदान ले लो, और फिर जी मौका नहीं मिलेगा। इस बीच में राजा मनु ने अपने नेत्र खोल लाए और चरण वंदना की। तो इन्हें सोची कौन सा हम वरदान मांगे, ये भी हमने विचार में नहीं बना पाओ। वो लेकर लाए ऐसा हमें पुत्र मिल जाए तो सबसे अति उत्तम है। तो मन में विचार किया, मुखारबंद से नहीं की राजा मनु ने कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। मन में विचार किया कि हमें विष्णु भगवान जैसा ऐसा पुत्र मिल जाए। तो विष्णु भगवान तो तीन लोग की नाथ थे, उन्हें सोची ऐसा पुत्र तो कहीं दूसरा हो ही नहीं सकती हमारे सिवाय, तो उसमें समय लगेगा। तो उन्होंने की ठीक है वस्तु ऐसा ही होगा। तो उन्होंने बताई भगवान विष्णु भगवान ने कि अभी तो जो है सत्ययुग चल रहा है, जब त्रेता आएगा त्रेता में आपको हम जैसा पुत्र मिलेगा। तो मतलब शांति धारण कही। इसके बाद माता शत्रुपा के पास पहुंची विष्णु भगवान, उन्हें देवी कहा है शत्रुपा से कि देवी वरदान मांग लो, क्या मांगना है। तो उन्हें सोची कौन सा वरदान मांगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से अति प्यारे हैं। जबकि राजा रानी को भी पता नहीं था कौन वरदान ने मांगे क्या है, लेकिन उन्हें की अति उत्तम है और जो पति ने वरदान मांगे वे हमें प्राणों से प्यारे हैं। तो विष्णु भगवान बोले ठीक है अभी आप

0: सतयुग चल रहा है, बैकुंठ पान करो, अमरावती स्थान दोगे आपको, अमरावती में बैकुंठ पान करो, जब त्रेता आएगा तो हम पुत्र के निमित्त में हम ही आएंगे आपके यहाँ, और दूसरा कोई है ही नहीं, तो हम पुत्र के निमित्त में आपके यहाँ आएंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है आप बैकुंठ पान करो, विष्णु भगवान अपने चले जाते हैं और नए अमरावती में अपना आसन जमा किया, मतलब बैकुंठ पान की गया। जब यो त्रेता योग आया तो त्रेता में राम बारह कला से भरे, भरत जी चार कला से भरे, मतलब इस तरीका से, और मतलब सीता जी आई तो जी मतलब विष्णु भगवान का अवतार है राम।
1: अच्छा,
0: सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग युग तो चार ही है, इन्हें चार में फेर बदल होता रहो समय समय पे, तो भगवान त्रेता में पुत्र के निवृत्त में आए शत्रुपा, जो राजा मनु थे शत्रुपा थी, बयान के दशरथ और कौशल्या हो गई। इसके बाद जो कौशल्या है और वो जो है कौशल्या और दशरथ थी, फिर आने के जी जो है भाई यहाँ पे देवकी और वासुदेव, उन्हीं का अवतार है। और आज यह स्थिति है कि वो तो महान शक्तियां थी, महान शक्ति हैं और रहेंगी, जो पूर्व में है माता पार्वती हैं और शंकर भगवान हैं, उन्हीं का रूप कारसदेव का है, कारसदेव के रूप में शंकर जी हैं, और जो हेलादी बहन है वो माता पार्वती हैं। तो आगे तो बहुत पुरानी हैं, और लेकिन अब जाए कि एक तो कम समय है और समय के संगे जो है मतलब बहुत लंबी कथा है, इसलिए जो है इसका शॉर्ट में।
1: हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने देखो कितना अच्छा वृत्तांत जो सुना दो। अब एक क्रम में आपसे हम जो भी जान बचा है कि आपने इसके अलावा और कौन रुचि लाई कुछ
0: बजा रुचि के लाने, तो वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम जुड़े रहे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में जैसे कहीं कीर्तन है, कहीं भजन है, और कहीं मतलब गोट गायन है, कभी फाग सम्मेलन है, कभी किसान सम्मेलन है, तो कहीं ना कहीं तो जुड़े रहे। अच्छा, इसी क्रम में जैसे मतलब कभी शंकर जी बनवा उतरे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो जैसे अभी एक माह शंकर जी बने अपने यहाँ घर पे, और फिर अभी 14-15-16 तारीख में मतलब अपने 3 दिन कार्यक्रम चला।
1: अच्छा,
0: तो उसमें मतलब अखंड रामायण चली, और फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय को कीर्तन जी चलो, और फिर गुट गायन भी चलो। तो अभी जी 14-15-16 तारीख में कार्यक्रम करे गए, और मैं तो जी चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ा रहे, पुरानी परंपराएं लुप्त ना हो जाएं, इसका जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये करने से पाप क्षय होता है, और आगे अगले पर के लिए जैसे अपन आज अपन जो भोजन करते हैं और आगे जो भोजन करेंगे उसकी व्यवस्था करते, इसी प्रकार से मनुष्योनी है, इस मनुष्योनी में अभी अपन कुछ कर सकते हैं। अगर पशु बना दो तो एक जगह बंधे बंधे क्या कर सकते हैं, मनुष्योनी में है तो कुछ भी कर सकते हैं। इस मनुष्योनी के लिए देवता तरसते हैं, मतलब
1: सही बात कह रहे हैं,
0: अगर देवता भी सामने आ जाए तो आदमी भय खा जाए, वो तो प्रेत आ जाए तो भय खा जाए, और मनुष्य बात कर सकता है, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अभी मौका है, कर लेना चाहिए। योग तो चार ही है, सत्ययोग द्वापर त्रेता कलयुग, तो इस कलयुग में भी एक राम नाम ऐसा है कि जिसका रटने से उद्धार हो जाता है,
1: केवल नाम लेने से।
0: नाम लेने से पहले यज्ञ करते थे सतयुग में तो उतना पुण्य होता था, आज जो है राम का नाम लेने से मतलब कृतार्थ हो जाते हैं। तो शंकर जी बनत रहे, और शंकर जी के संगे, शंकर जी को तो बहुत सीधे सच्चे देवता हैं शंकर जी। ओम नमः शिवाय का भजन करो, और शंकर जी तो तीन लोग के नाथ है, साक्षात है, चाहे सत्य हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, शंकर जी सभी योगों में। वो जो अमर है, जैसे विष्णु भगवान को रूप बदल के राम को अवतार हो, राम को अवतार बदल के कृष्ण को अवतार हो, तो इनने तो थोड़ा परिवर्तन कर दो, लेकिन शंकर जी तो जागृता है,
1: शंकर जी ने परिवर्तन।
0: हाँ, तो शंकर जी का जो ही है कि छोटो सा मंत्र है,

0: शिवाय। अब गणपति जी की ये स्थिति है, गणपति जी के नाम अलग अलग रहे, अलग अलग समय में अवतार हुआ, जैसे विकट गणेश, भक्तुन गणेश, मिष्दंत गणेश, लंबोदय गणेश, भालचंद गणेश, हेरम्ब गणेश, कृष्णनामा गणेश, विकट नामा गणेश, गजानन गणेश, गणाधिप गणेश। तो गणेश भी
1: अलग अलग हैं सब,
0: अलग अलग अलग हैं सब,
1: नाम ही हैं।
0: नहीं नहीं नाम है वो अलग अलग
1: हैं,
0: अलग अलग अलग अलग अवतार भी हैं, अलग अलग नाम भी हैं।
1: अच्छा,
0: सत्ययुग में कुछ नाम से हैं, त्रेता में कुछ नाम से हैं, द्वापर में किसी नाम से हैं, कलयुग में किसी नाम से हैं। गणपति जी भी है तो जो आदि गणेश हैं वो गणेश आदि गणेश हैं। अब जो माता पार्वती जी ने अपने महल से तैयार करे थे गणेश, और जब माता पार्वती नहाने के लिए तैयार हुई तो पहरे पे गणेश जी का बैठा दो, तो एक डंडा लेके गणेश जी बैठ गए, बोले नहीं आई यहाँ कोई नहीं आएगा। एक बार शंकर जी चल देते हैं, तो माता पार्वती के पास जाने लगे तो उन्हें पता भी नहीं था कि शंकर जी ने कहा कि गणेश जी तैयार कर दे माता पार्वती ने अपने महल से। तो उन्हें वही धोखा, तुम कौन हो, हे बाबा तुम कौन हो। अरे बोले हम शंकर जी, हमको पार्वती से मिलना है। अरे बोले नहीं नहीं माता पार्वती अभी नहा रही नहीं जा सकती। अरे बोले हमें मने कर रहे गणेश जी कहा शंकर जी ने। शंकर जी बोले नहीं माता का आदेश है नहीं जा सकती आप अंदर। गणेश जी ने कहा, शंकर जी बोले मुझे कौन मने कर सकता है। अरे बोले मैं नहीं जाने दूंगा माता का आदेश है। तो गणेश जी ने लेके डंडा लाए थे, शंकर जी ने चिखा लो। अरे नहीं जब ज्यादा घाल दे तो शंकर जी क्रोधित हो गए और जाके नंदीश्वर कहा बताई कि भाई जी देखो कौन कहां से अटपका है। और बोले कल मुझे तो कोई मालूम नहीं। तो गणेश जी के पास नंदीश्वर आए, शंकर जी की गण है, बोले तुम कौन हो कहां से आ गए। अरे बोले माता का आदेश है नहीं जाए कहीं नहीं जा सकती माता के पास। तो गणेश जी ने मतलब शंकर जी यहां परास्त करो और नंदीश्वर का परास्त करो, माता ना उतरे। अब जब क्रोधित हो गए शंकर जी ने उनका शीश काट दो, नाराजी में त्रिशूल से शीश काट दो। माता क्रोधित हो गई पार्वती, जब माता पार्वती क्रोधित हो गई तो सारे देवता इकट्ठे हो गए। तब जो है सब यही रखी कि माता किस बात में आप शांत हो गई। बोले हम गणेश का जीव देखना चाहते हैं। तो फिर विष्णु भगवान जो है अहरापत हाथी था कहीं, तो वहां से शीश ले आए थे कि जो पहला मतलब जो है जो भी जीव जंतु मिले उसका शीश लगाना है। तो अहरापत हाथी को शीश ले आके गणेश जी लगाओ, तो आज गणेश जी की पास सूण है और गणेश जी मतलब वो गणेश जी गजानन गणेश हो गए।
1: अच्छा,
0: गजानन गणेश भाई मतलब तो प्रथम पूजगढ़ राज है जो व्यापक सर्वत्र वंदना उनको आपको स्वीकृत हो गणपत। तो गणेश जी की पहले वंदना है सभी देवताओं श्रेष्ठ गणेश जी, फिर वहां से हो गए। तो गणेश तो अब जैसे द्वादश शिव ज्योति लेंगे तो उनके स्थान अलग अलग हैं। एक स्थान तमिलनाडु में पड़ता है, तीन महाराष्ट्र में स्थान पड़ते हैं, एक उत्तराखंड में पड़ता है और एक झारखंड में पड़ता है, एक उज्जैन में महाकालेश्वर के नाम से होते और एक स्थान जो है वाराणसी में काशी बनारस में जो मतलब वहां विश्वेश्वर से इनके नाम से जाते। तो अलग नाम द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग है। तो शंकर जी भी मतलब वैसे बहुत बड़ी शक्ति है ना, तो एक जगह इनके स्थान है द्वादश शिव ज्योतिर्लिंग। इतना समय नहीं है आदमी के पास, उतना पैसा भी नहीं है कि इतना समय निकाल सके, इतना पैसा खर्चे। वैसे खान लेके हमने जो है पिताजी ने जगह जगह से उनकी बालू ले आए,

0: ਪਿਸਤਾਨਗੀ ਮੁਹਾਂ ਕਾ ਜਲ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇਸੀ ਧਰਮ ਮੈਂ ਉਹ ਦਵਾਦਸ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗੀ ਕੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੈਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੇ ਤਤਮਾਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਉਹ ਦਵਾਦਸ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੈਂ ਦਵਾਦਸ ਜੋਤੀ ਲਿੰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ।
1: आपने देखो इतना कीमती समय निकाल के अपन सब जन के बीच में अपनी बात रखी, अपने जब बात बताई, इकलिया ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भैया।
0: नमस्कार आपको भी धन्यवाद।
1: हाँ सो देखो दोस्तों, जो अपन ने बात सुनी है भैया ज्ञान सिंह यादव जी से, और इनने कितनी अच्छी बात अपने आज के कार्यक्रम बधाबंदली में करी है। अब दोस्तों यही क्रम में आप और कह रही है कि माता दिन भैया ज्ञान सिंह भैया जी की बातन में लगे हैं और मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं कर रहे। सो दोस्तों मनोरंजन के लाने हमें ध्यान है, आओ सुना थे एक बढ़िया सी ठाकुर जी ये गा रहे हैं भूपेंद्र सिंह यादव जी।
2: कि झांसी बासी दिनारा और फिर थी पुरुष वधा।

जानो लीजिए और अब उत्तरों की ओर।

ಶರುನಾಶ ರೇ ಶರರು ಪುಲ್ ಕಳಕೆ ಮಾತಾಟಿ ಲಾ ಜಾಂ ಜಜಿ ಕುಲ ಫುಂದರು.

देखो दोस्तों, जब अपन ने फाक सुनी, फाक को आनंद लो, फाक को गा रहे थे भैया भूपेंद्र सिंह यादव जी। अब दोस्तों आज के कार्यक्रम विधा बुंदेली को इतनी समापन होवे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया खुद ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आँख मारी।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ और

0: नहीं कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ये तो भूल लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
1: कितना
0: कल

और जब पूछना कृष्ण भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे तो जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान, तो क्या बोले हद से हद से।

भगवत दलन से भगवत दलन से लगन लगी थी मिलवे चेल तुम्हारी भगवत दलन से लगन लगी थी मिलवे चेल तुम्हारी।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज

हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे भैरव जी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं इससे जुड़े, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना। और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बनाना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, भैरव जी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे। लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना। पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और भैरव भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लाला जी, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही आज तो।

0: बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लाला जू का इतने ही जा रहे थे ने, मैंने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे?
0: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितना के आधी अधूरी जानकारी ले लो तो कहता के नीरत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहा है लाला जू, आधी माधी कर लेते सो भाई कर रहा है, का कर रहा है?
0: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गई कछु भी चीज की कछु भी काम की तो ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं।
1: तो बास का कह रहा लाला जू, घर को कुत्ता, घर को ना घाट को?
0: अरे बाकाना दूसरी हम जा दूसरी कह रहा है कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहा है, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो।
0: हाँ तो अब हमने बात सुनी तो है ना की, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: तुमने ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लाला जू?
0: अब बस भौजी तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी बड़ी बता तो इन तरह से रहे थे, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, वह हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लाला जी मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम्हारा मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें कायफों बस सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
0: अरे भोजी तुम्हारा केवे को मतलब का है, कुन में उतर के तुम मोड़िया ने देख रहे हो तो?
1: मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
0: अब भौजी नहीं सुन पाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बना ही लीजिए।
1: हाँ ये राम भाई तुम्हें तो खूब आते है गो, अब बना लो।
0: अब भाई तो कर रहे भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
0: अब जी सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला तुम तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
0: अब का भौजी जब काम करे तो भड़ना जाए, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
0: अरे भौजी जब अपन पूरी तरह से जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुनो कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छा हो जाता।
1: का कह रहे लाला जू, दूध में मिला के पियो तो अच्छो हो जाता?
0: हाँ कोनो काम अगर अपन अच्छा घुल मिल के करें भाई रुच से तो हमने की तरह भिड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे है की मैं भिड़ जाओ तो मुझे देखता क्या मैं और मुँह पोत दू मैं तुम्हारा, तुमने और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
0: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से तुम्हें बन जे?
1: कहा कह रहे लाला जू चाटा खल जे, मैं देखा तुम्हें ये हो गयी तुम्हारी हमें।
0: अरे भौजी तेन तो कह रहे की सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैं देख तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू कर ले।
0: अब तो सुनाते है इतनी तेज कहते है मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लाला जू
0: कछु नहीं जय कह रहे आज की कह रहे थे बता दो करूँ काम है, समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लाला जू तुम चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
0: अब लेकिन तू भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लाला जू तू जाने है?
0: हाँ उतने तो ठाड़ी सजी
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए देता हूँ।
0: अरे मैं सब जाना आई हूँ जी मुही ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लाला जी झूठी कह रही?
0: अरे भाजी कछु नहीं अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बताए देता हूँ, अब मुझे जाने होते अब मैं टेम हो रहा हूँ। तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
0: अच्छा अमृत जल बनाने?
1: हाँ यानी कि अमृत पानी बनाने, वो कैसे बना थे?
0: हाँ
1: वो जो गैया को गोबर हो बाय ले लो,
2: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक जो सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
0: अच्छा
1: है वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कै दिना के लाने? तीन दिना के लाने, ठीक है लाला जू? आ रही समझ में?
0: बिल्कुल बिल्कुल नोनी तरह से आ जा रही।
1: कहा कह रहा लाला जू ने कम तरीका से आ रही?
0: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ भाई तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिना के लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत एक चमचा कहूँ ऐसो घुमा दे, कहूँ ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब, तो बस चमचा को ऐसे घुमाने।
0: कब जी कब हड़िया को नीचे करने के ऊपर करने?
1: अरे लाला जू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जारत के भाव में गुठलाना पड़ जाए, सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
0: अच्छा ईलंग और उलंग?
1: हाओ सुबह एक ही मिल जाए तीन दिन में, फिर उसके बाद लाला जू हो तुम्हें जो करने के परते बनाने, वो बन गो अपनो जल बन गो।
0: हाओ
1: अब वो बना

0: अपनी गंजा भैसन को तो ऊपर बिछा दू, बाकी आ रही
1: हाँ आ रही है समझ।
0: फिर ऊके ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है, और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की में
1: 10 प्रकार की बीज लेने,
0: चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और उमें भी बे दू और पानी लगातार छत जाओ ठीक है। फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने वो जो अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
2: पत्ता मत्ता
0: डालने ठीक है। डालने के बाद उमें अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात,
1: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ इतनी
0: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो।
1: अच्छा हूँ का देने आए, अब मैं तो ये सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा
0: हूँ तो ठीक है। सो उके बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही मैं मिला दूँ गाय में वही में जो अपन ने लगाई है।
1: अच्छा
0: हाउ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दो, और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से भाई में मिला दो
1: तो फिर बन गई मट्टी।
0: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको खरुआ लेके मिक्स कर लो।
1: अच्छा
0: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन गेहूं म्याहूं कछू लगा रहे भाई फेंक जाओ पिंच जाओ भाई डाल दो तो वो एक अपनो रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाह में मिल रहा है, जैसे साथी इनकी कहावत रह क्या बाह में रासायनिक बाह में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो इनमें भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी है इनमें।
1: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बात है, अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
0: हाँ तो इनमें 2-3 चीजें जो फायदा की है, एक तो इसे अपनो स्वास्थ्य सही रहेगा है लाला जू
1: आओ।
0: और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगा लाला जू हो। देखो मैंने अगर टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु मैं तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह प्राला वो बतात बतात।
1: अरे भाजी तो करने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाया जाता।
0: हाँ हाँ तुम तो वही ले आज 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आज काय को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
1: अरे भाजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो।
0: हाँ तो लाला जी मैं चली
1: बिल्कुल अब तो भाजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
3: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में।
4: आप

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और
0: बिना जलवायु के बड़े होते हैं,
1: बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली
0: हरियाली
1: रहते हैं।
0: रहते हैं।
1: तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है कि, और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है,
0: खरपतवार
1: तो
0: मतलब
1: इसी
0: आप
1: से तैयार होता है। देखिए ये तो अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं या नहीं करते हो, तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है, वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो
0: खरपतवार निकलता
1: खरपतवार
0: है।
1: जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं, और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी
0: जी
1: जस्ट बताया
0: जी
1: कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त
0: बिल्कुल
1: है
0: जी
1: जगह है,

0: और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की, किसी भी फसल में बार बार पानी देने की
1: यानी
0: आवश्यकता
1: आवश्यकता
0: पड़ती है।
1: पड़ती
0: तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं, जैसा
1: जी
0: मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया
1: जी
0: और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कह भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि भूमि
1: जी
0: या मिट्टी
1: उर्वरा
0: की
1: शक्ति
0: गुणवत्ता है उर्वरा
1: उर्वरा
0: शक्ति वो
1: बढ़ाने
0: काफी
1: की
0: बढ़ जाती है
1: जी
0: और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे
1: अच्छा
0: आपको
1: तो
0: सिंचाई
1: जी
0: देर से
1: कम देनी पड़ती
0: कम
1: है
0: देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो आपके ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई
1: जी
0: जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका
1: जी
0: प्रयोग नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती
1: जी
0: के लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं, या
1: अच्छा
0: अगर आपका खेत खाली है कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले
1: लगा
0: सकते हैं
1: सकते हैं। और
0: क्या। और ये तो और भी अच्छी बात है कि
1: बिल्कुल
0: किचन गार्डन क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
1: जी
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं तो
1: जी
0: जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि उसका जो भी काफी अच्छी हो जाती है
1: जी
0: और गुणवत्ता भी काफी जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है,
1: अच्छा
0: तो किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम सुपकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी, और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है, तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पर अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही हैं, ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही हैं। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों, हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं, तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9219207749। फिर श्रोताओं, आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं, और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको, ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेश जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम

0: दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम सुबह कल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों, अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम सुबह कल से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
0: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
0: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत खो जीखो गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे, आपको ले चला थेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उसके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन वर्ल्ड की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी, एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
0: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
2: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करते कि नहीं आपको ये करना आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप, मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना, मतलब लाइक इतना इस चीजों, पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
2: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन से भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को, पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम, जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रहे होते हैं पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
2: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ, हमें इस जगह शिफ्ट करना है। हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों के बारे में वैल्यू आएगी, और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो दे व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
0: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे, वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
2: देखिए स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन्स कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेज होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेज के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए, और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी।

0: यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
1: शुक्रिया नंदिनी जी।
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
3: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अबे सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है वो। अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन सुपकल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी सुपकल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो सुपकल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को सुपकल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उमे भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उमे भी सफल भई हैंगी। यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में। आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी भई कहानी आप सबको सुनवावे।
4: वर्षा हमें भी लगा थे गो कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो। और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे। और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे। वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगी, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सो गांवन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो, तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने का संदेश आप भी दो।
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जो तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अभी तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो। सो यही तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो। सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी ही हैगी तो आपको बता देवे कि सुपकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे। जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है को तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी। काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में, सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो। तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी इसके पात्र हकदार होगी। कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो, और आपको बता दे वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था। और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो। और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा है गो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर साथी आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकत हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैं कि वर्षा की पूरी कहानी अभी तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है वो हमारा
5: 92-19-20-77-49।
3: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो एने ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है। सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने हैं, बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाता ही है, लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं। क्या कि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, अगर अपने साथी भैया सुन के उम्र बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे। तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे, ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे। और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो, काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतना समाप्त हो जा रहा है गो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
4: और मनीष को देव जावे की इजाजत,
3: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
5: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक कहानी को हम सुनाते हैं आपके बीच में और हमारा साथ देते हैं मनीष जी। तो मनीष जी, आज हम अपने कार्यक्रम के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि पिछले एपिसोड में हमने प्रवेश कर लिया था और आगे तीसरे अध्याय में क्या होता है इस पर हम और आप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं।
4: जी बिल्कुल, और सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की हम जो एपिसोड बाई एपिसोड आपको कहानी सुना रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और हमको पता नहीं रहता है, और साथ साथ में हम उन छोटी छोटी बातों पर भी एक प्रकाश डाल रहे हैं जो उनसे जुड़ी बातचीत हो। तो अभी तक हमने इस पूरे कार्यक्रम में जाना कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होने के बाद जब महाराज जी का देहांत हो जाता है तो अब उनके हाथ में जो कमान रहती है और झांसी की बागडोर रहती है उस पर किस तरीके से खरी उतरती है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजों के शासन के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी झांसी में कि वहां पर शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने धैर्य का परिचय देते हुए और उस झांसी पर अपनी परचम लहराया और साथ साथ में ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना कब्जा किया और ग्वालियर के लड़ाई के बाद उनका देहांत हो गया था। और साथियों, इसमें अभी तक आपने इन छोटी छोटी बातों को जाना कि किस तरीके से महाराजा जी का देहांत हो गया था। अब हम जानते हैं कि उनके बाद अब क्या होता है। तो सन 1752 ईस्वी में बारन हैंसिंगटन जने इस देश के राजाओं और प्रजा पर जो अत्याचार किया था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट सभा में विचार करते समय यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में अपने राज्य का विस्तार करने या वहां का देश अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करना ब्रिटिश राजनीति और उसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ने लिखा है कि हमारे नूतन प्राप्त राज्य की मर्यादा इतनी विस्तृत है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का विचार करते हैं तब आयन बनाने वालों की इस उस गंभीर सूचना की बुद्धिमत्ता और आवश्यकता हमारे मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती है, जिससे यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति या राज्य विस्तार का काम करना ब्रिटिश राजनीति इज्जत और इच्छा के विरुद्ध है, परंतु यह निश्चित 6 वर्ष से अधिक समय तक न ठहरने पाए। सन 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर चढ़ाई की और इसका आधा राज्य हस्तगत कर दिया था। फिर 6 वर्ष के बाद सन 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलस्ने ने टीपू सुल्तान का सारा राज्य ही अपने अधीन कर लिया।
3: थोड़े ही दिनों के बाद कर्नाटक प्रांत और अवध के नवाब से लिया हुआ प्रांत अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बहुत संतोष हुआ, परंतु अल्प समय में ही उनके राज्य की मर्यादा बहुत बढ़ जाने के कारण उन्होंने घबराकर पुनः निश्चय किया कि अब हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति का कोई प्रयत्न न किया जाए। अल्प ऑफ मोइरा के गवर्नर जनरल होते ही नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत बड़ा प्रांत ब्रिटिश सरकार के

0: अंगीकार में आ गया। तत्पर यह कि ब्रह्मा देश, आसाम, कुर्ग, सिंध, पंजाब आदि बड़े बड़े प्रदेश क्रमश अंग्रेजी अमलदारी में शामिल हो गए। जब लॉर्ड डलहौजी सन 1847 ईस्वी में यहाँ आए, तब उन्होंने यह निश्चित किया कि जो देसी रियासतें लावारिस होती जाएं, वे ब्रिटिश राज में शामिल कर ली जाया करें, और जिन रियासतों को दत्तक लेने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है, उनको लावारिस समझकर ब्रिटिश राज में शामिल कर लेना चाहिए। इस विषय में उनका जो मत था, वह उन्होंने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया।
1: मैं किसी के लिए यह संभव नहीं समझता कि वह इस राजनीति पर कोई आपत्ति कर सके कि जो प्रदेश पहले ही से अपने कब्जे में है उसके बीच में यदि कोई ऐसी छोटी छोटी रियासतें हों जो लावारिस हो गई हों, उन्हें अपने कब्जों में लेकर उचित अवसर आ पड़ने पर अपने मुल्क का विस्तार बढ़ाया जाए, उसकी उन्नति की जाए। इन छोटी छोटी रियासतों में हम लोगों को सिर्फ तकलीफ ही मिल सकती है। मेरी समझ में ये हमारे राज्य की मजबूती का कारण हो नहीं सकता, अतएव उनको अपने राज्य में मिला लेने से इनसे होने वाली तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमारे खजाने की बढ़ती भी हो सकेगी। ऐसा करने से उन रियासतों को हमारी राज्य प्रणाली का लाभ अवश्य होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इसी में उन रियासतों की हर तरह की भलाई है। यह मेरी पक्की और विचार पूर्वक निश्चित राय है कि अपनी उचित और बुद्धि मत्तापूर्ण राजनीति से काम लेने से अंग्रेजी गवर्नमेंट का आवश्यकता कर्तव्य है कि मुल्क लेने में या आमदनी बढ़ाने के ऐसे उचित मौकों को आप समय समय पर हाथों हाथ आवे कभी ना छोड़ना चाहिए। ऐसे मौके चाहे उस इस समय पैदा हो कि रियासत किसी भी किस किस्म का हो, कोई वारिस ना हो, चाहे इस तरह की असली वारिस ना होने से अंग्रेज सरकार के इजाजत देने पर हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेकर कोई वारिस बनाया जा सकता है। उन दिनों मौकों को हाथ से निकल जाने देने की भूल कदापि ना करना चाहिए।
0: जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उसी समय गवर्नर जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए हुए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश यह था, इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराज भाऊ ने सरकारी जो सहायता की थी, वह झांसी के दफ्तर से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी, उससे हमारा सदा कल्याण हुआ है। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराज गंगाधर राव के साथ कर्नल सलीमन साहब ने जो संधि की थी, उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गईं, किंतु यह वचन दिया गया था कि वे सब शर्तें पूर्वता पाली जाएंगी और होने वाले सब फायदे झांसी राज्य को प्राप्त होंगे। शिवराव भाऊ के सौजन्य पूर्णता बर्ताव और ब्रिटिश सरकार के संबंध में उनके हृदय के अटल प्रेम की ओर ध्यान देकर उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी कि झांसी का राज्य रामचंद्र राव को वंश पर परंपरा के लिए दिया जाए, उसे स्वीकार करने उक्त संधि की गई है। झांसी सरकार का प्रेम भाव और विश्वास दृढ़ करने के हेतु उक्त संधि से यह निश्चित हो चुका है कि रामचंद्र राव उनके वारिस और गद्दी सनी शिवराज भाऊ के राज के वंश परंपरा के स्वामी हैं। इसका अर्थ यही है कि स्वामी में मोक्ष प्रति के हेतु अपने पश्चात

0: क्रिया करने के लिए जो दत्तक पुत्र लिया जाएगा उसको ब्रिटिश सरकार मंजूर करे और उसके द्वारा घराने का नाम कायम रखे।
1: हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत पिता को पिंड दान करने और उसकी श्राद्धी क्रिया करने का अधिकार औरस पुत्र के समान दत्तक पुत्र को ही है। इसलिए दत्तक लेने की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। इसी तरीके से इसी रीति के अनुसार हमारे मृत पति ने 16 नवंबर को दीवान नरसिंह राव आपा लाला लाहोरीम तट्टी चंद्र अनेक सज्जनों के सम्मुख मुझे बुलाकर यह कहा गया कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है और अब औषधियों से कुछ लाभ नहीं होता, अतएव गद्दी का वारिस होने के लिए अपने गोत्र के किसी योग्य बालक को हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेने का मेरा विचार है।
0: तब उन्होंने रामचंद्र बाबा को बुलवाकर अपने गोत्र के अनेक बालकों में से वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव नामक के 5 वर्ष बालक को पसंद किया। अतः विद्वान पंडितों और शास्त्रियों को बुलवाकर दत्तक विधान किया गया। दूसरे दिन सवेरे पंडित विनायक राव ने संकल्प पढ़ा और आनंद राव के पिता वासुदेव राव बने। यथाविधि पुनः दान किया गया। इस पुत्र का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया और दत्तक विधि समाप्त की गई। महाराज की आज्ञा अनुसार मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन साहब को दत्तक विधि के समय राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसके अनुसार वे दोनों 20 तारीख को 10 बजे राजमहल में आए थे। उस समय हमारे पति ने सरकार की इजाजत हासिल करने के लिए उनको एक खलीता दिया जो वही पर पढ़कर उन्हें सुनाया गया था। मेजर एलिस साहब ने यह वचन दिया था कि महाराज की इच्छा अनुसार हम सरकार को सब हाल सूचित कर देंगे। दूसरे दिन अर्थात सोमवार तारीख 21 नवंबर को हमारे पति का देहांत हुआ। उनका सारा क्रियाक्रम दामोदर राव गंगाधर राव ही ने किया। इस बालक को हमारे पति ने ब्रिटिश सरकार की कृपा के अधीन किया है। अब उसकी रक्षा और पालन का भार उन्हीं पर है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित जालौन के बालाराम और ओरछा के तेज सिंह के लिए हुए दत्तक को सरकार ने मंजूर किया, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपनी मंजूरी दे। झांसी के संधि पत्र में हमेशा शब्द का उपयोग किया गया है। यह शब्द उक्त राजाओं के संधि पत्रों में संयुक्त नहीं हुआ है। अतः उन राजाओं की अपेक्षा दत्तक लेने का हमारा हक अधिक है। यही खलीता गवर्नर जनरल साहब की सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में यह लिखा था कि जिस तरह ओरछा से राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक सा है। ऐसी अवस्था में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे राज्य को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपने तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में यह स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा हक है। अब यदि यह बहाना किया जाए कि जिन घरानों को ब्रिटिश सरकार ने पूर्व सहायता के बदले राजपद पर चढ़ाया है वे अन्य घरानों के समान प्राचीन नहीं है, और यदि इसी बहाने से उनका कबूल ना किया जाए तो मेरी राय में यह बात डायरेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध और उनकी उदारता का नाश करने के समान है। परंतु यह पत्र बुंदेलखंड के एजेंट दफ्तर में ही बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के प्राचीन निवास स्थान खानदेश के रहने वाले भाई बंधुओं में से सदाशिव राव नारायण नाम के किसी एक मनुष्य ने झांसी का राज पाने के लिए मेजर मालकन साहब को एक प्रार्थना पत्र भेजा। इस प्रार्थना पत्र को गवर्नर जनरल की सेवा में भेजते समय तारीख 31 दिसंबर 1853 ईस्वी को मालकम साहब ने अपनी सिफारिशी चिट्ठी में यह लिखा है
1: कि यदि मृत राजा के पुरखों के किसी बारे

0: जल हौजी साहब दौरे से कलकत्ते को लौट आए तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार ने पर राज्य समधि सचिव मिस्टर जेपी ग्रंट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत ही बड़ी मिसाल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इसी बात पर जोर दिया गया था कि झांसी का राज अंग्रेजों राज्य में मिला दिया जाए। इस पर वाद विवाद करके लाट साहब और उनके काउंसलर लोगों ने निश्चय किया कि वह यह है कि झांसी महाराज गंगाधर राव देहांत 1853 ईस्वी नवंबर मास में के अंत में हुआ। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु के दिन पहले एक लड़के को दत्तक लिया। महाराज गंगाधर राव की स्त्री महारानी लक्ष्मीबाई यह प्रार्थना करती है कि भारत सरकार उक्त दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का वारिस कबूल करे। सेक्रेटरी ने झांसी राज्य का जो संक्षिप्त वृत्तांत लिखा है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि ब्रिटिश सरकार और झांसी राज्य का संबंध किस प्रकार का है। इस बात पर विचार पूर्वक ध्यान देकर और झांसी राज्य के साथ पहले से ही जो हमारा पत्र व्यवहार हुआ है उस पर ध्यान देकर मैं इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता हूं कि झांसी के राजा साहब के अधीन जो प्रांत था उसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए।
1: मेरी यह राय है कि इस प्रांत का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया है। उस अस्तित्व को ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहने देना ही हक और राजनीति की दृष्टि से उचित होगा। जिन सिद्धांतों के अनुसार झांसी राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए उसका पूरा पूरा विचार हाल ही में नागपुर और टिहरी के राज्यों के संबंध में वाद विवाद करते समय किया जा चुका है। बुंदेलखंड की छोटी छोटी रियासतों के विषय में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ साहब ने जो नियम बतलाया है और जिसको सरकार ने सन 1837 ईस्वी में स्वीकार कर लिया है उस पर ध्यान देने से और आश्रित राज्यों के विषय में सन 1846 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो नियम निर्धारित किया है उस पर विचार करने से यही निश्चित होता है कि झांसी राज्य को लावारिस समझकर अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का हमको पूर्ण अधिकार है।
0: जिस लेख में उक्त सिद्धांतों का वर्णन है उसको मैं बता देना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने यह स्पष्ट रीति से कहा है कि यदि भारतवर्ष में सब साधारण नियम और रूढ़ी के अनुसार जो रियायतें सतारा राज्य के समान स्वतंत्र नहीं है उनका स्वामित्व सार्वभौम सरकार की अनुमति के बिना किसी दत्तक वारिस को प्राप्त नहीं हो सकता। यह इस प्रकार की अनुमति देने के लिए हम प्रत्यज्ञ या अप्रत्यक्ष रीति से किसी प्रकार के वचन से बद्ध नहीं है और जब इस प्रकार की अनुमति दी ना जाएगी तभी ऐसा समझा जाएगा कि हमने अपने कब्जे में आए हुए प्रांत की भलाई की और उचित ध्यान दिया है। बुंदेलखंड राजाओं के विषय में सर चार्ल्स मेटकाफ साहब लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या जिनकी और संतान नहीं है वे दत्तक लेकर अन्य वारसों का हक या जब कोई वारस ना हो तो सार्वभौम सरकार को प्राप्त होने वाला हक मार सकते हैं। क्या सरकार इस प्रकार के दत्तक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? इस प्रश्न का निर्णय करते समय ऐसे राजाओं में जो वंश परंपरागत गद्दी के हकदार हैं और उन जागीरदारों में जिन्होंने उक्त राजाओं से या सार्वभौम सरकार की ओर से जागीर मिली है जो भेद है उस पर फ्रेजर साहब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरी यह राय है कि यदि हिंदू राजाओं की औरत संतान ना हो तो उन्हें दत्तक लेने का हक है और ऐसे दत्तक को यदि वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हो तो ब्रिटिश सरकार अवश्य मंजूर करे।

0: आप जिन जागीरदारों को राज्य की ओर से जागीर मिली हो उनके अधिकारी उनके उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार उन्हीं राजाओं को जिन्होंने जागीर प्रदान की थी या जागीर दान की शर्तों के अनुसार उन लोगों को है जिन्होंने युद्ध करके या अन्य किसी तरह से उन जागीरदारों के हक स्वयं अपने अधीन कर लिए हैं। इन शर्तों को खास मतलब यही रहता है कि औरस संतान के सिवा दत्तक पुत्र या अन्य कोई वारिस ना हो। अतः ऐसे मामलों में राजाओं ने जागीर प्रदान की है उन्हें या उनके स्थान में स्थापित होने वाले अन्य राज्य अधिकारियों को यह अधिकार है कि जब कोई जागीर ओर से पुत्र ना होने से लावारिस हो जाए तब वे उसको वापस ले लें। झांसी का राज सतारा के समान की बहुना उससे भी अधिक आश्रित है। वह सर्वभौमित्व के नाते से ब्रिटिश सरकार के दिए हुए इनाम के तौर पर एक जागीरदार के कब्जे में था। अतः औरस पुत्र ना होने से उसको वापस लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार का है।
1: यह बात निर्वितवाद सिद्ध है कि झांसी का राज आश्रित है, वह स्वतंत्र राज कभी नहीं था। इतना ही नहीं किंतु टहरी का राज जितना स्वतंत्र माना जाता है उतना ही वह नहीं है। वस्तुतः झांसी टहरी का भी यह भाग है जिनको टहरी के प्रधान स्वामी पेशवा ने किसी एक सूबेदार को सौंप दिया था। और साथियों अब चर्चा चूंकि बहुत हो चुकी है और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। और झांसी का वृत्तांत जो है काफी बड़ा है और ऐसे वृत्तांत को सुनने का मजा ही कुछ और है। तो साथियों इस बात को जरूर मानिएगा कि जो हम बात बता रहे हैं वो वास्तव में पिछले जो हमने देखी भी नहीं हमारे पुरखों ने भी नहीं देखी वो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर रहे हैं।
0: साथियों इसमें मानते हैं कि कुछ गलतियां भी जरूर होंगी तो आप उन गलतियों को नजरअंदाज कर शब्दों पे ना जाकर भावनाओं पे जाने का प्रयास करें। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आज का ये कार्यक्रम का तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बातें आपको समझ में आई, हमें जरूर लिख दीजिए हमारे इस पते पर या फिर हमारे फोन नंबर पर। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछतगेला के पास ओरछा।
0: साथ ही हमारा मोबाइल नंबर है
2: 9219207749।
0: आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की से जाने की दीजिए हमें इजाजत।
1: आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अपनी साजिश
1: या ससुर जी का दुलार,
0: ननद जी से हो नोक झोंक
1: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
0: आपका अपना कार्यक्रम
1: बातें छोटे पर्दे।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी मातादिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है, सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी 1 एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवम्बर में तैयार करें नर्सरी और भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी हैं ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते एक बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

गई थी कहाँ धनिया डारी किते कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाजे से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत

अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों, टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच टमाटर की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्पर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता है? दोस्तों, यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय। दोस्तों, जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए। इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है, वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 g प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी

पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए, क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका, खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक, उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। 1/3 नत्रजन, स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा, टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना, केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जा अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों अब एक क्रम में अपन और कह रहे हैं कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आ दोस्तों मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को। जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में देत उरानो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता दे में कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त मातादिन भैया को दो ही कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में, यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो ले। तो दोस्तों आओ सुनते हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

रंग काली क्या करे में डारे डूड़ा बैल सवारी, तुम्हारी महिमा बड़ी निराली।

जो भांग धतूरा खावे अजब लगावे पारी। निरगुण सरगुण निराकार में नाम तुम्हारो भारी। भगवान दास।

0: बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं इस छोटे से संदेश के बाद। अच्छा भैया, पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा, कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चेताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी, आप जा बताओ कि आपने जो गावो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे,
0: हाँ
1: पहले के, तो होता थे पहले से।
0: पहले से भजन जी होता थे आपके थे? अच्छा, तो आपने उन्हें से सीख लो जो ऐसा
1: पहले बैठा था डाटा दूर दूर।
0: हाँ दूर दूर
1: के वो सुना हो पर नहीं।
0: हाँ,
1: फिर उन्होंने कहा तो मैं सीख नहीं हमने। हाँ
0: हाँ,
1: सो उन्होंने फिर बजवाओ गुवाओ।
0: अच्छा, तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है? जो
1: जब हुए हम 15-16 साल की।
0: 15-16 साल की। हाँ, तो आपको अच्छी लेहती मतलब गावे की?
1: हाँ लेहती।
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे जो होते भजन वजन, तो आप उनके करके उनके बैठन लगाते
1: हो,
0: तो जो भजन का डेली होते क्या है, कम गहू होते ऐसे?
1: पहले तो जैसे ब्याह माई करें आदमी ने,
0: हाँ
1: बैठ गए सब रोज ही होते पहले तो।
0: अच्छा,
1: अगर रिश्तेदार आ गए तो कही आज आज होने होने है।
0: अच्छा,
1: सुबह अच्छी ले लगी।
0: हाँ, फिर तुम्हें ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला कहा गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की, जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं।
0: हाँ,
1: वो तो जैसे आपने गाओ।
0: हाँ, सो हमने उठो संगे लो वाला।
1: आपने कहे हम तुमको बोलो।
0: हाँ,
1: ऐसे ऐसे सीख गए।
0: अच्छा, मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर नहीं आप तुम साइड में बोलो।
1: हाँ, पहले छेड़ पर सीखो एक दूसरे से।
0: हाँ,
1: फिर उन्हें सको के जा गाने तो नहीं आओ।
0: हाँ,
1: सुनने के सुनाओ।
0: हाँ,
1: फिर ऐसे ऐसे गावो।
0: गावो सीख गए?
1: सीख गया। सब चाहे थे पार्टियां में चले जा।
0: अच्छा, अच्छी बात है। देखो तो आपको कितनी जब लगन से हो सब
1: कुछ। लगन से
0: है के जब जिया जी आदमी
1: हमें देख लगन है कि ब्याह है पे हम एक साल घर नहीं रहे।
0: अच्छा, मतलब ब्याह आपको होगा तो?
1: हाँ, वो घर नहीं आए एक साल। हम
0: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
1: मारे जो सिखाओ तो उनके संगे रहे ले जाए।
0: अच्छा, आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ। लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा, हमें कोई शिकायत चाहे हमें कछु नहीं सीख रहे, हमें तो घर रहना।
1: वो नहीं कहते रोटी खाई हमने।
0: अच्छा,
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा, को गाओ तो आपके तो जो ऐसे हमारे संगे सीखते
1: चा से हते परिवार के।
0: हाँ,
1: प्यार लाल कुशवाहा गुजर गए अब।
0: अच्छा,
1: बे हाँ गुरु की हती
0: तो बे गाऊ था सारंगी बजाऊते
1: हो? सारंगी
0: तो बे गाऊते हो सारंगी बजाऊते हो। तुम तो फिर उन्हीं के संगे लग गए
1: बस,
0: घर से कोई मतलब नहीं।
1: हाँ।
0: अच्छा, शादी क्या साल की हती जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी 18 साल में।
0: 18 साल में। तो देखो आपको जब लगन लगी, लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु, आपको तो अपनो मंजिल दिखा रही थी कि हमें जो काम करने वो करने
1: हमें सीखने सीखने है गाओ बजाओ
0: है। तो देखो एक लगन हो जी।
1: अबे ये तो अपनो साजबाज।
0: हाँ,
1: आप बूढ़े पानों का रखे हैं अपनो।
0: अच्छा। हाँ, तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे वाओ?
1: सारंगी है, खंजड़ी है, जे झाने है।
0: अच्छा,
1: झीका है।
0: झीका है। हाँ, जे चीजें बजाते हैं। हाँ, आपके तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के जो बाजे है जे अबे भी आप संभाल के रखे हैं अच्छी तरीके से।
1: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी ले गावो बजावो और बनावो सब
0: के अगर जब फूट जाए तो यही से मर लो।
1: मर लो।
0: अच्छा, कैसे मरता अगर फूट जाए तो?
1: जैसे जे बकरा की खाल है बकज्जा की वो जाता जाना बढ़ जाए गोवा मिल जाए।
0: अच्छा,
1: गोवा की वह बढ़ जाए बोला वो इतने की दाल बांट के।
0: अच्छा,
1: वो उसे घेरे से लगा दो कड़ाई बना के जो जो जागी दस्सी की।
0: हाँ,
1: वो दो तीन आदमी टीरे को चढ़वा दे डांट के।
0: अच्छा,
1: दो दिन चढ़ियन दी
0: ले साहब। तो इको फेविकोल भी नहीं चाहने?
1: हाँ हाँ, फेविकोल तो फेर है वो इधर के सामने।
0: अच्छा, जयते के ज्यादा काम करत।
1: हम्म,
0: चलो भैया, तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने कहो के सीखो जो सब काम, तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगे रहे?
1: लगा ही रहा बिल्कुल। काम करो घर करो रात होने के संगे कर गए।
0: अच्छा, घर से कोई मतलब नहीं रहो। चलो भैया जी, तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई। बस जी आदमी खोजी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके होगा
1: रुकता ही है।

0: ଦାଗ ହଉ ହଁ ନା ଗାଇ ଲୋ ଆବେ
1: ଆଚ୍ଛା କି ଗେଲୋ ଆବେ ଗାଇ
0: ହଁ ଘର ଆଣି
1: ବହୁ ହଁ ହଁ
0: ସୋ ହଁ ଭାଜି ବୋଲେ କେ କାଇ ତୋ ଦବା ତ ଜାନନ ନି ଭାଜନ ନି
1: ହଁ ହଁ ଜବ ଘରେ ଆଗେ
0: କତେ କତେ କତେ ତୋ ନି ଜାଣେ ହଁ ଏ ହମନେ ଜାଣେ ତ ହେ ହଁ ଏ ବୋଲେ ମା ନି ଜାଣେ ହଁ ଓ ଆପଣ ଲଗାଓ ସାବନ ହଁ ଓନା ନ ଲଗାଇ କିନି ଆପ ଆପଣ ସଙ୍ଗେ ଭାଗ ଗଏ
1: ଲେଉ ସାବ
0: ତିନ ଦିନ ଲୋଟେ ଓହୋ
1: जे तो जब की बात है जब आपको लगन लगी थी लेकिन अब के लड़का भाई आजकल बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी नमस्कार
2: नमस्कार। हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाऊ थे। और दोस्तों एक के संग अगर आप और भी गाऊ थे बजाऊ थे और अपनी बात को हम तक रखवा चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकत। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 075-25-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकत के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाऊत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाऊत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर भी के लाने और साथियों तक पहुँचा भी के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितना बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गाए थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के ही देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनते हैं ये प्यारे से गीत को।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन माँ विराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितनो प्यारा जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को अपने दोस्त माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो हो माँ। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ई गीत को आनंद लो है। और दोस्तों, ई गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ई गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गए है। तो अपने दोस्त को दें ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात ए कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों, आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों, आज की सभा इतनी संपन्न होते है तो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों, हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतना ही समापन।

0: होवे को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।